FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 5 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने

0: 14 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज विचारों का विषय है मन।

प्रकाश देने वाले दीपक को देखने के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार स्वप्रकाशित आत्मा को जानने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा अपरिवर्तनशील है। बुद्धि का कोई स्वयं प्रकाश नहीं होता और ये आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती है। यदि बुद्धि सांसारिक विषयों को समझ और जान पाती है तो ये आत्मा की शक्ति के कारण है। बुद्धि का आधार मेधा शक्ति है। बुद्धि की शक्ति आत्म चैतन्य की प्रतिछाया है। मन के दो पहलू हैं, कर्ता और भोक्ता। ये आसक्ति भाव और स्वामित्व भाव का कारण है। सुषुप्ति की अवस्था में परम चैतन्य प्रकाशित रहता है तथा मन, इंद्रियां और बुद्धि निष्क्रिय रहते हैं। जिस प्रकार अग्नि में तपा लोहा अग्नि से भी अधिक लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति का चैतन्य प्रकाशित होता है। जब सुषुप्ति में मन निष्क्रिय हो जाता है तो अतिमानस सक्रिय हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य में कोई इच्छा, भय या चिंता नहीं होते। मनुष्य इंद्रियों और मन द्वारा बंधा है। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे पहले मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन स्थिर होने पर अतिमानस की अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में भौतिक या क्षणभंगुर सांसारिक अनुभवों के लिए स्थान नहीं होता। जब तक मन पवित्र है तब तक हृदय में कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। जब मन अशुभ भावों से प्रदूषित होता है तो बुरे विचारों को जन्म लेने का अवसर मिलता है। हमें इस तथ्य को जानना है कि मानव जीवन मन पर आधारित है। जब तक मनुष्य मन द्वारा संचालित होता है तब तक विराट चैतन्य के असीम स्वरूप का अनुभव नहीं होता। हम एक बड़ा मकान बनवाते हैं जिसमें अनेक शयन कक्ष, भोजन कक्ष, स्नानागार आदि होते हैं। ये बड़ा मकान अनेक छोटे कमरों में विभाजित प्रतीत होता है। इसका कारण अंदर की दीवारें हैं। यदि दीवारें हटा दी जाएं, तो एक बड़ा कक्ष रह जाएगा। इसी प्रकार मानव शरीर वो उपाधि या दीवार है जो मनुष्य की अनुभूति को शरीर तक सीमित करती है। एक बार इस देहात्म भाव से मुक्त हो जाने पर सर्वव्यापी सार्वभौमिक विराट चैतन्य का अनुभव होता है। जिस प्रकार हाथ, कान, आँख, पांव सभी मानव शरीर के अंग हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य समाज के अंग हैं। समाज मानवता का अंग है। मानवता प्रकृति का अंग है और प्रकृति ईश्वर का अंग है। ईश्वर और मनुष्यों के इस अंग अंगी भाव संबंध को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। यद्यपि मनुष्य बुद्धि से युक्त है किंतु वो इंद्रियों को वश में नहीं।

0: नहीं कर पाता। मनुष्य को मानव जीवन के महान महत्व को समझना चाहिए जो अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। देहात्म भाव के कारण मनुष्य अपना अंतर्निहित दिव्यत्व भूल रहा है। प्रकृति तथा सांसारिक विषयों के बारे में काफी अध्ययन करने पर भी हम कृत्रिम जीवन जीते रहते हैं। आज संसार में न केवल व्यक्ति की इंद्रियां प्रदूषित हैं, अपितु पांचों तत्व भी प्रदूषित हैं। वायु, जल, जो वस्तु भी हम देखते हैं वो प्रदूषित है। अतः इस संसार में शांति की आशा कैसे की जा सकती है? वेदांत शिक्षा देता है कि हमें मन के पार जाकर अंतर्दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए, ताकि हम बुरी भावनाओं को हृदय में प्रवेश करने और ईश्वर के निवास को प्रदूषित करने से रोक सकें।
1: मन, इस विषय पर विचार बिंदु में थे आज के विचार। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत आराधना।

विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल, कमल के कुंज तेज पुंज छवि ललित ललाम। ऐसे हैं मेरे सियाराम, सूरज की पहली किरणों संग सियाराम को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आराधना की प्रथम भजनांजलि ए हरिहरन और साथियों के स्वरों में।

देवी माँ शेरावाली सदा अपने भक्तों पर कृपा है बरसाती। जो भी माँ के दर्शन कर आया, जीवन अपना सफल कर आया। माँ के द्वारे में जो सुख शांति है, वो अन्यत्र कहाँ। सृष्टि को दृष्टि मिलती है माँ के द्वारे, और भक्त फकीरा बन माँ के चरणों में जीवन यापन का आकांक्षी रहता है। आराधना की अगली भजनांजलि रूप कुमार राठौर और साथियों के स्वरों में।

प्रभु नाम की, हरि नाम की जिसे लौ लग जाए, उसे इस नश्वर संसार से और क्या चाहिए। बस यही प्रार्थना है, ये मन भजता रहे, ध्यान करता रहे हरि नाम। वही नाम परम तत्व तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रस्तुत है आराधना में अगली भजन भावांजलि मोहम्मद रफी के स्वर में।

शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है, गंगाधर है, शिव शंकर है, अविनाशी मृत्युंजय है, भोलेनाथ भक्तों के आराध्य है। आइए शिव शंकर का गुणगान करें, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें और जीवन अपना सफल करें। आराधना की अगली भजनांजलि को स्वर दिया है ए हरिहरन और अनुराधा पोटवाल ने।

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए कृष्ण नाम सुमिरन करें, श्याम प्रभु कृपा बरसती रहे, भक्ति में भक्त भीगता जाए। आराधना में लीजिए, अब सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजनांजलि।

अधरन पर मुरली सजे चक्र तुष सुदर्शन हाथ, मोर मुकुट सजे शीश पर तू ही जगत का नाथ रे। कान्हा की बांसुरी की धुन में वो सम्मोहन है कि सारा ब्रह्मांड इस धुन में खो जाता है। तो आइए हम भी भक्ति रस में डूबें चित्रा सिंह के गाए इस भजनांजलि के साथ।

आराधना संकामना जीवन भक्त को है सवारना, सुख के धाम परमात्मा नाम, करते रहें सदा ध्यान।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज की बात। श्रोताओं, आज है 5 जुलाई और इतिहास में क्या है खास जानते हैं आज की बात में। सभी श्रोताओं को अंजुपांति का नमस्कार। श्रोताओं, 5 जुलाई 1811 को वेनेजुएला ने औपचारिक रूप से स्पेनिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ये घोषणा कराकास में हुई, जहां वेनेजुएला की पहली नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति दी। ये लैटिन अमेरिका में किसी स्पेनिश उपनिवेश द्वारा स्वतंत्र की पहली घोषणा थी और इसने पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलनों को बल दिया। हालांकि वेनेजुएला को पूर्ण स्वतंत्रता कई वर्षों की लड़ाई और राजनीतिक संघर्षों के बाद 1821 में मिली। 1811 की ये घोषणा उस आंदोलन की नींव मानी जाती है। ये दिन आज भी वेनेजुएला में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जुलाई 1975 को अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी आर्थर एश ने इतिहास रचते हुए विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में उस समय के नंबर 1 और प्रबल दावेदार जिमी कॉनर्स को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ आर्थर एश विंबलडन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले अश्वेत पुरुष खिलाड़ी बने, जो टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एक ऐतिहासिक पल था। ये मैच न सिर्फ उनकी खेल प्रतिभा का प्रतीक था, बल्कि नस्लीय बाधाओं को तोड़ने वाला एक प्रेरणादायी क्षण भी बना। आर्थर एश की ये जीत आज भी खेल और समानता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जाती है। 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस ने अमेरिका के वॉशिंगटन वेलव्यू शहर में अमेजन कंपनी की स्थापना की थी। शुरुआत में इसे एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बेजोस का विजन इससे कहीं बड़ा था। अमेजन का पहला नाम कैडाब्रा था, जिसे बाद में बदलकर अमेजन रखा गया, क्योंकि ये नाम विशालता और विविधता का प्रतीक था, जैसे अमेजन नदी। ये कंपनी 1995 में सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन लॉन्च हुई और जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में शुमार हो गई। ये दिन इंटरनेट व्यवसाय के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जाता है। 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट में दुनिया के पहले सफलतापूर्वक क्लोन किए गए स्तनपाई डॉली नाम की भेड़ का जन्म हुआ था। डॉली को एक वयस्क भेड़ की कोशिका से क्लोन किया गया था, जो कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया पहला स्तनपाई था। हालांकि डॉली के जन्म की जानकारी को 6 महीने तक गुप्त रखा गया और इसका औपचारिक ऐलान 1997 में किया गया। ये वैज्ञानिक उपलब्धि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। 5 जुलाई 2003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का वैश्विक स्तर पर नियंत्रण कर लिया गया है। ये खतरनाक वायरल बीमारी सबसे पहले नवंबर 2002 में चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में सामने आई थी और फिर कुछ ही महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई। WHO की तेज प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की मदद से इसकी रोकथाम संभव हो सकी। ये घटना वैश्विक महामारी नियंत्रण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार और कथाकार असगर वजाह जी का आज जन्मदिन है। 5 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आपका जन्म हुआ। आपने सामाजिक, सांप्रदायिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेहतरीन लेखन किया है। उनकी सुप्रसिद्ध रचना जिन लाहौर नई वेख्या वो

ओ जन्मिया इनाई एक चर्चित नाटक है जो सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता है। इसके अलावा इन्ना की आवाज नाटक और गरजत बरसत उपन्यास जैसी कई रचनाएं उन्होंने की हैं। टेलीविजन, फिल्म लेखन और निर्देशन से भी आप जुड़े रहे। असगर वजाहत का साहित्य मानवीय संवेदनाओं को गहराई से प्रस्तुत करता है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। भारत की जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू का आज जन्मदिन है। 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। उन्होंने बहुत कम उम्र में बैडमिंटन में गहरी रुचि दिखाई और गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। इसके साथ ही वे 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2019 में उन्होंने BWF विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा। उनकी तेज गति, फुर्ती, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा खेल उन्हें विश्व की शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल करता है। और आज है नेशनल वर्कहोलिक्स डे। हर साल 5 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो अत्यधिक कार्य करते हैं और अक्सर अपने स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन की अनदेखी कर देते हैं। वर्कहोलिक व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसे आराम, मानसिक शांति और व्यक्तिगत संबंधों के लिए समय नहीं मिल पाता। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना है कि संतुलित जीवन जीना बहुत जरूरी है। लगातार तनावपूर्ण कार्य करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये दिन हमें संदेश देता है कि कार्य के साथ साथ आराम, मनोरंजन और अपनों के साथ समय बिताना भी आवश्यक है। तो श्रोताओं, आज की बात में बस इतना ही। अंशुपांक्ति को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है समूह स्वरों में देश गान।

समोस्वरों में देशगान आपने सुना। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है विविधा। आज की विविधा के साथ हाजिर हूँ मैं अंजू पांगथी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बूंदों की घुंघरू छनकाती, गीले पैरों से मन आंगन को गुलो गुलजार करने वाली बरखा ऋतु की मेहरबानी के लिए आकाश, धरती, नदियाँ, हम, आप सभी दामन फैलाए इंतजार करते हैं। ऋतु आती है तो पूरी प्रकृति बूंदों की थाप पर जैसे गुनगुनाने लगती है। एक उत्सव का सा माहौल चारों ओर नजर आता है। हमारा पावस निराला होता है। बारिश का मौसम इकलौता ऐसा मौसम है जो बाकायदा ऐलान करके आता है, दिखाई देता है, महसूस कराता है अपने होने का, अपनी उपस्थिति का। कवि दिनकर जी ने वसंत को ऋतुओं का राजा कहा और वर्षा को रानी कहा है। तभी तो वर्षा रानी जरा जम के बरसो कहते हैं ना हम। राजा की सज्जा अनूठी है, मान लिया, लेकिन रानी की पालकी जब आती है तो केवल कुदरत ही नहीं, इंसान भी उसकी रौनक से सजे जलसे में झूम उठता है। बूंदों का नर्तन, बौछार, रिमझिम, फुहार, ये सारे शब्द बारिश से ही जुड़े हैं और हर एक शब्द में खुशी अपार है, एहसासों की भरमार है। और जब ग्रीष्म की तपन के बाद बूंदें धरा पर बरसती हैं तो सौंधी मिट्टी की खुशबू से हर हृदय आह्लाद से, प्रसन्नता से भर उठता है। और अक्सर हम यही कहते हैं ना कि बारिश अच्छी लगती है, इसीलिए अच्छी हो इसकी दुआएं की जाती हैं। धरती की गोद भर जाए, उसका सौभाग्य दमकता चमकता रहे, इस उम्मीद की पींगे हरियाली टहनियों पर झूलती झूमती हैं। इस मौसम के नजारे नजरियों को नया शिल्प दे देते हैं। बारिश की कविताओं में भी वही बूंदों वाला चमकीला आकर्षण है। कवियों की, लेखकों की कल्पनाओं को बारिश के खुशनुमा रंग से भर देता है बरसात का मौसम। और बारिश के मौसम के शुरुआत के साथ ही पौधा रोपण के साथ आगमन होता है वन महोत्सव का। हमारी जिंदगी में वनों का कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं। वन की अधिकता से हमारा पर्यावरण संरक्षित होता है और हमारा जीवन हरियाली से परिपूर्ण हो जाता है। प्राणवायु, ऑक्सीजन गैस मिलती रहती है। हम 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं पूरे हर्षोल्लास से और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक पौधारोपण करें ताकि बारिश की ये खुशहाली हमेशा बनी रहे। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि वनों की सुरक्षा और उनकी कटाई से जीव जंतुओं पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसके प्रति जागरूकता फैला सके। वनों की कटाई रोकना, ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करना और जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। भारत में आजादी के तुरंत बाद ही वनों और वृक्षों को काटने से रोकने के प्रयास सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा शुरू कर दिए गए थे। एक ओर जहां 1950 में वनों को बचाने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत की गई, तो वहीं दूसरी ओर 1970 के दशक में जब देश में वन संपदा का अपार भंडार था, तब भी पर्यावरण की चिंता करते हुए लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू कर दिया था। हमारे पूर्वजों ने पौधारोपण किया, तभी तो आज वृक्षों का भंडार नजर आता है। और ये सबसे सुहावना मौसम है जिसमें अधिक से अधिक पौधारोपण करके हम वन

0: महोत्सव के इस हरियाली से परिपूर्ण उत्सव को उल्लास और उमंग के साथ मना सकते हैं। बस कोशिश हर एक की हो, वृक्षों को काटने की बजाय खूब सारे पौधे लगाएं और अपनी धरा को हरियाली से परिपूर्ण करेंगे, तभी तो हमारा भी अस्तित्व बना रहेगा। तो श्रोताओं, जो वन महोत्सव हम आजकल मना रहे हैं, इसमें जन जन की भागीदारी बहुत जरूरी है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि हर एक की जिम्मेदारी है। वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर आइए अधिक से अधिक पौधे लगाकर हरित भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान हम सभी दें। एक पौधा केवल पर्यावरण ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की भी नींव है, और इसी हरियाली से खुशहाली की राह निकलेगी और तभी होगा प्रकृति का संरक्षण, भविष्य का संवर्धन। तो श्रोताओं, बूंदों की इस ऋतु का आशीष धरा के लिए बहुत जरूरी है। हरियाली और खुशहाली का संदेश देती आज की विविधा संपन्न होती है। अनुमति दीजिए अंजू पांक्ति को नमस्कार। विविध विषयों से सजी विविधा लेकर हम प्रतिदिन हाजिर होते हैं विविधा में। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद 7 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकंडक्टर संयंत्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढ़विश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 2020 यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21 शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट् इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीनसत्रमस्य मासस्य विंशतिदिनाङ्कात् अगस्तमासस्य त्रयोदशदिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य विंशतिदिनाङ्कात् संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशतिः विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका।

0: सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रीराम, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज इस सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, आज सुबह 10:30 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के तहत आप सुनेंगे श्री देवेंद्र सुरा से बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। समय याद रखिएगा 10:30 पर। अब से कुछ ही देर में 7:10 पर श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग प्रसारित होगा। 8:30 पर नन्हे मुन्ने बच्चे सुनते हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका हर रविवार को। आज चर्चा के विषय इसमें रहेंगे विश्व जनसंख्या दिवस, रानी लक्ष्मीबाई केलकर जयंती, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बारिश के मौसम में रखें अपना ध्यान और खेल खिलाड़ी अंक के तहत लक्ष्य सेन के बारे में बच्चे जानेंगे और साथ ही बच्चों की विविध प्रस्तुतियां नन्हे मुन्ने बच्चे सुन सकेंगे। दिन में 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वर्तमान समय में माँ की बदलती भूमिका, इस विषय पर श्रीमती मीनू बिष्ट से संगीता तिलारा की क्षेत्र संकलित बातचीत सुनवाई जाएगी। दिन में 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज डॉक्टर कंचन नैनवाल जानकारी देंगी मडुआ मादिरा की संस्तुत प्रजातियां एवं खेती इस विषय पर। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है 5:00। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10:00 रविवासरीय संगीत सभा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। संगीत के कार्यक्रमों में लोक संगीत आप सुनेंगे 7:30 पर लोक मंजरी में, दिन में 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत में, 5:00 शैलस्वर में और 7:00 प्रादेशिक लोक संगीत के तहत। आज 11:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा विदुषी अनीता सेन की गाई कजरी। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से शहनाई पर कजरी हम आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों के प्रोग्राम गीत नरझर में 9:05 पर। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुनेंगे 12:30 मेरी पसंद में, दिन में 2:00

45 मिनट पर एक फनकार में, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्म गीत में, शाम 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में, और सैनिकों के लिए में पूर्वाह्न 11 बजे। श्रोताओं को हम एक बार फिर से याद दिला दें, आज सुबह 10:30 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत श्री देवेंद्र सुरा कांस्टेबल हरियाणा पुलिस से बातचीत हम आपको सुनवाएंगे, जो कि हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा में पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन। ये सभी कार्यक्रम भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले होंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज इस सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज का प्रसंग। आज सुनिए भाग 145। कलाकार हैं वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। कलाकार थे वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर। आज भाग था 145। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में आयोजित ईट राइट यूथ हैकथॉन उत्तराखंड 2026 में विजेता टीमों को सम्मानित किया। कहा, युवा नवाचार स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य प्रणाली को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उत्तराखंड में SIR अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा। चंपावत के लोहाघाट स्थित देश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। प्रथम सत्र के लिए 30 छात्राएं चयनित। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य का भविष्य युवाओं की शिक्षा, कौशल और नवाचार पर निर्भर करता है।

0: अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि युवा नवाचार स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य प्रणाली को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो देहरादून के लोक भवन में आयोजित ईट राइट यूथ हैकथॉन उत्तराखंड 2026 के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विजेता टीमों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड ईट राइट यूथ हैकथॉन की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं की रचनात्मक क्षमता को समाज के हित में उपयोग करने के साथ स्वस्थ, सुरक्षित और सतत खाद्य प्रणाली के निर्माण में प्रेरक साबित होंगे। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने नवाचारों को व्यवहारिक रूप देने का आह्वान किया। हैकथॉन में राज्य भर की 387 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उच्चशिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 1600 से अधिक छात्र छात्राओं की भागीदारी युवाओं की स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य प्रणाली के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने देहरादून में प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश के करीब 99% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। एक रिपोर्ट।
1: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के 79,60,762 मतदाताओं में से 71,16,650 मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। वहीं 8,41,020 मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में हैं, जिनमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पहले से पंजीकृत और अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। कुल मिलाकर 79,57,670 मतदाताओं का डेटा और गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को प्रकाशित होगी। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 100% बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 11,733 मतदान केंद्रों के लिए अब तक 23,102 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जा चुके हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी ने 11,000

0: 604 और कांग्रेस ने 11,105 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
1: विद्यालयी शिक्षा विभाग में मेडिकल आधार पर स्थानांतरण का लाभ लेने वाले शिक्षकों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निदेशालय स्तर पर विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल आधार पर स्थानांतरण की व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए संबंधित शिक्षकों का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा। जांच में फर्जी या भ्रामक प्रमाण पत्र पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त या शारीरिक रूप से अपने दायित्व निभाने में असमर्थ शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की सूची तैयार कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग को शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 55 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। चारधाम और हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 43 लाख पहुंच गई है। अब तक बद्रीनाथ धाम में 14,28,000 से अधिक और केदारनाथ धाम में लगभग 14 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 6,78,000 जबकि यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 6,32,000 के पार पहुँच गया है। वहीं हेमकुंड साहिब में अब तक 1,72,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। राज्य सरकार यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए मौसम की निगरानी, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा पर निकलने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा।
2: चार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: चंपावत जिले के लोहाघाट में स्थापित देश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज ने अपना शैक्षणिक सफर शुरू कर दिया है। प्रथम सत्र के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है जिसमें 30 छात्राओं का चयन हुआ है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने चयनित छात्राओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह महिला सशक्तिकरण और खेल विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला समर्पित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज है जहां छात्राओं को विश्व स्तरीय खेल प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। श्रीमती आर्य ने कहा कि उत्तराखंड के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं को अब अपनी प्रतिभा निखारने के बेहतर अवसर मिलेंगे। खेल मंत्री ने विश्वास जताया कि इस संस्थान से प्रशिक्षित खिलाड़ी भविष्य में ओलंपिक, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि पहले बैच की 30 छात्राएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को चंपावत जिले के टनकपुर से अगले पड़ाव के लिए रवाना करेंगे। यात्रा दल के कल टनकपुर पहुंचने पर पारंपरिक कुमाऊनी रीति रिवाज और छोलिया नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। 51 सदस्यीय पहले दल में 2 लाइजनिंग अधिकारी, 1 चिकित्सक और 48 श्रद्धालु शामिल हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम के अनुसार यात्रियों में राजस्थान से 13, महाराष्ट्र से 9, दिल्ली से 7, उत्तर प्रदेश से 5, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा से 3-3, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से 2-2 तथा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना से 1-1 यात्री शामिल हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने बताया कि इस वर्ष टनकपुर मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल

0: 10 दल रवाना होंगे। वहीं श्रद्धालुओं ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का अवसर मिलने पर खुशी जताई और सरकार की ओर से किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया है।
1: कैलाश मानसरोवर और हम लोग सौभाग्य की बात है कि हम लोग पहले नंबर पहले बैच पे हम लोग चुने गए भगवान के दरबार पे जा रहे हैं और बहुत उत्साह है। जो हम लोग की स्वागत हुआ है बहुत बहुत बढ़िया है, रोमांचक है और यहाँ के जो कल्चर वगैरह है बहुत ही बढ़िया है।
2: मेरा नाम हरी है, मैं गुजरात से आया हूँ और ये खुले फर्स्ट बैच में हूँ। मैं और मेरी मदर आई है और हम लोग की जो इच्छा थी कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा वो अभी कुछ दिनों में पूर्ति होने वाली है, तो इसके लिए महादेव का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जो हमारी सेवाएं हो रही है, जितना आप लोग ध्यान रख रहे हैं, ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। खास करके कुमाऊं मंडल और वो लोगों ने जो हमारी सेवा की है उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम रास्ते में आए वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में आयोजित ईट राइट यूथ हैकथॉन उत्तराखंड 2026 में विजेता टीमों को सम्मानित किया। कहा, युवा नवाचार स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य प्रणाली को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उत्तराखंड में SIR अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा। चंपावत के लोहाघाट स्थित देश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। प्रथम सत्र के लिए 30 छात्राएं चयनित। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य का भविष्य युवाओं की शिक्षा, कौशल और नवाचार पर निर्भर करता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। श्रोताओं, बारिश का मौसम है तो आइए बारिश में ही भीगा कुमाऊनी लोकगीत सुनते हैं लता तिवारी के स्वर में।

जी हाँ, रिमझिम बरखा रानी यही संदेश देती है कि हरियाली और खुशहाली बनी रहे। लेकिन हम सभी को ये जिम्मेदारी निभानी है कि खूब सारे पौधे लगाएं और अपनी धरा को हरा भरा कर दें। यही संदेश देता एक और कुमाऊनी लोकगीत सुनिए समूह स्वरों में।

जी हाँ, हरी भरी धरती क्या सुहावनी नजर आती है। बरखा का मौसम हर एक के लिए अलग अलग एहसासों से भरा रहता है। इनकी क्या आस है, क्या चाह है, क्या बारिश से गुजारिश है, सुनते हैं अगले कुमाऊनी लोकगीत में। कलाकार हैं सुरेश प्रसाद।

श्रोताओं, पहाड़ों का ठंडा पानी, यहाँ की मीठी बानी, जो यहाँ बस जाए फिर पहाड़ छोड़ना भला कैसे चाहे। और तभी तो यहाँ ऐसे सुंदर लोकगीत जन्म लेते हैं जो मानव मनोभावों का सुंदर निरूपण प्रस्तुत करते हैं। यही मनमोहक भावों से सजा एक और कुमाऊनी लोकगीत, आइए सुनते हैं भाषा पंथ के स्वर में।

और अब लोकमंजरी में चलो चलें सुदूर रंगीलो ज्वार माँ मेरो मुनशार माँ, एक कुमाऊनी लोकगीत के साथ। कलाकार हैं गोविंद सिंह पंचपाल।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
4: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
2: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
3: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
5: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
2: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
6: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत

0: अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ

0: लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu also said that the launch of the Viksit Udaan scheme will mark the next chapter of India's regional connectivity journey. Mr. Naidu said, the scheme launched by Prime Minister with an outlay of over 28,840 crore rupees will facilitate the development of over 100 new aerodromes and 200 helipads, bringing the dream of affordable air travel closer to millions and connecting the aspirations of a rising India.
4: It is the vision of Prime Minister Narendra Modi that wherever there is expansion of civil aviation, it should benefit not just passengers but also the economy of the entire city, businesses, students and every sector as well as citizens. We can see the effect across the country today.
2: Later in the day, Prime Minister Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test, or OSAT, plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also

0: boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है. 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे. हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
0: Mr. Modi also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore.

0: travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका।
2: जय हिंद बच्चों।
3: जय हिंद।
2: रविवार है, छुट्टी का दिन। परिवार और दोस्तों के साथ मिल बैठकर बाल वाटिका कार्यक्रम सुनने का दिन। तो बैठे हैं ना आप सब सुनने को अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम बाल वाटिका। हम भी, तुम भी और
4: ओ मैं भी, तू भी, हम सब मिलके बम बम बम बम बम बम।
2: तो प्यारे बच्चों, आज की बाल वाटिका में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत सत्कार। और कीजिए स्वीकार अपनी दीदी मेघा रावत का स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, कहते हैं किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में सुरक्षित होता है, है ना। और जब यही नन्हे नन्हे कदम अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और संस्कारों की धुन पर आगे बढ़ते हैं, तब हर हृदय गर्व से भर उठता है। जहाँ हर कण में मातृभूमि का मन बसता है, जहाँ हर हृदय में तिरंगे का सम्मान बसता है, तो वहीं से शुरुआत होती है एक नई पीढ़ी की पहचान। तो चलिए आज इन्हीं भावनाओं के साथ बाल वाटिका कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस सुमधुर गीत के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे।

तो प्यारे बच्चों, अभी हमने नन्हे मुन्ने बच्चों से ये गीत सुना। तो बच्चों, ये गीत हमें जहाँ विनम्रता का संदेश देता है, तो वहीं हमें प्रेरित भी करता है कि हम अच्छे संस्कारों, अनुशासन और कर्म के बल पर भारत का गौरव बढ़ाएं और अपने देश की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करना भी सीखें।

0: इन्हीं भावनाओं को अपने जीवन में साकार किया वीरांगना लक्ष्मीबाई केलकर ने। इन्होंने मातृशक्ति को जागृत कर राष्ट्र निर्माण का दीप जलाया और उसकी ज्योति आज भी अनगिनत हृदयों को आलोकित कर रही है। प्यारे बच्चों, उनका विश्वास था कि जब बच्चे और माताएं संस्कारवान और सशक्त होंगे तभी राष्ट्र की प्रगति संभव है। प्यारे बच्चों, नारी को नारायणी बनाने वाली मौसी के नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई केलकर का जन्म 6 जुलाई 1905 को हुआ था। प्यारे बच्चों, इनका विवाह मात्र 14 वर्ष की आयु में पुरुषोत्तम राव केलकर से हो गया और विवाह के बाद समाज सुधार के कार्यों में इन्होंने अपना मन लगाया और महिलाओं को शिक्षित करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए बच्चों, आज प्रेरक व्यक्तित्व क्रम में नारी शक्ति जागरण की अग्रदूत लक्ष्मीबाई केलकर के बारे में जानते हैं मीनाक्षी से।
1: लक्ष्मीबाई केलकर 6 जुलाई 1905 को नागपुर के दाते परिवार में हुआ। बालिका का नाम कमल रखा गया। कमल के घर में देशभक्ति का वातावरण था। उसकी माँ जब लोकमान्य तिलक का अखबार केसरी पढ़ती थी तो कमल भी गौर से उसे सुनती थी। उनके घर में स्वदेशी वस्तुएं ही आती थी। गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने घर में चरखा मंगाया। 1932 में उनके पति का देहांत हो गया। लक्ष्मीबाई ने घर के 2 कमरे किराए पर उठा दिए। इससे आर्थिक समस्या कुछ हल हुई। इन्हीं दिनों उनके बेटों ने संघ की शाखा पर जाना शुरू किया। उनके विचार और व्यवहार में आए परिवर्तन से लक्ष्मीबाई के मन में संघ के प्रति आकर्षण जगा और उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से भेंट की और उनकी प्रेरणा से उन्होंने 1936 में स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेवा समिति नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया। सब उन्हें वंदनिया मौसी जी कहने लगे। उनके निरंतर प्रवास से समिति के कार्य का अनेक प्रांतों में विस्तार हुआ। मौसी जी स्त्रियों के लिए जीजाबाई के मातृत्व, अहिल्ला भाई के कर्तृत्व तथा लक्ष्मीबाई के नेतृत्व के आदर्श मानती थी। 27 नवंबर 1978 को नारी जागरण की अग्रदूत वंदनिया मौसी जी का देहांत हुआ।
0: तो बच्चों, जाना ना आपने लक्ष्मीबाई केलकर के बारे में मीनाक्षी से। तो प्यारे बच्चों, हमें भी इन वीरांगनाओं से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए और इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तभी तो बच्चों कहते भी हैं, नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी आधारशिला है।

0: प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई लक्ष्मीबाई केलकर जी के बारे में। और अब बच्चों, ये सब सुनकर आपका भी मन कर रहा होगा कि हमें भी देश के लिए कुछ कर गुजरना है ना। प्यारे बच्चों, यही देशभक्ति की भावना आप सदैव अपने अंदर कायम जरूर रखें। और आज यही बात अपनी कविता से हमें बता रही हैं पीहू।
1: हिंदुस्तान हमारा प्यारा, सब देशों से न्यारा, सूरज जैसे चमके दिन, चांदनी रातें सीन, पेड़ पहाड़ नदियां बहती, हरियाली भी यहाँ ही रहती। सारी दुनिया कहती है भारत माँ सबसे सच्ची है, सैनिक सीमा पर जो डटते, दुश्मन को भी मात वे देते, हम भी पढ़ लिख आगे बढ़े, देश का नाम रोशन कर दे, झंडा तिरंगा लहराए, हर दिल में प्रेम बस जाए, जय जवान और जय किसान, हम सब मिलकर करे सम्मान, जय हिंद जय भारत।
0: सच है बच्चों, हमारा देश भारत है महान, और इसकी महानता का गुणगान तो शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। और तभी तो बच्चों, भारत देश की रक्षा हेतु समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने क्रियाकलापों से देश को गौरवान्वित किया है। और बच्चों, भारत देश की रक्षा हेतु तो समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने क्रियाकलापों से देश को गौरवान्वित महसूस कराया। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही देख लीजिए, इन्हें आज भी प्रखर राष्ट्रवाद और सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। और बच्चों, इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 6 जुलाई को कोलकाता में हुआ था। प्यारे बच्चों, सही मायनों में मानवता के सच्चे उपासक और सिद्धांतों के पक्के पक्षधर थे। महानता के सभी गुणों का संगम इनके जीवन में देखने को

मिलता है। ये महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी रहे। बच्चों, महानता के सभी गुण इन्हें विरासत में ही मिले थे। इनकी माताजी का नाम जोगमाया देवी मुखर्जी था और पिताजी का नाम आशुतोष मुखर्जी था। बच्चों, बचपन से ही ये पढ़ाई में अव्वल रहे और कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेकर इन्होंने बीए, एमए और एलएलबी जैसी डिग्रियां भी हासिल की। मात्र 33 वर्ष की आयु में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे कम उम्र के कुलपति रही और इसके उपरांत इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। निष्पक्षता, अपनी वाक्पटुता और देशभक्ति की भावना के लिए इन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। प्यारे बच्चों, संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 23 जून 1953 को निधन हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमें भी ऐसे महापुरुषों के जीवन और उनके क्रियाकलापों से प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए।

0: तो प्यारे बच्चों, महापुरुषों के जीवन के साथ साथ हमें उनके द्वारा कहे गए अनमोल वचन भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं, है ना। और बच्चों, इन अनमोल वचनों की हमारे जीवन में बेहद ही अहम भूमिका होती है। तो चलिए, ऐसे ही कुछ अनमोल वचन आज हमसे साझा कर रही हैं प्रतिष्ठा।
1: कोई भी जन से बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अपने प्रयासों से ही पर्याप्त होता है। फूल की पंखुड़ियां तोड़कर तुम फूल की सुंदरता नहीं बटोरते। यदि आप धनवान हैं तो विनम्र रहें, फल लगने पर पौधे झुक जाते हैं। याद रखना, अंधेरी रात में आपको दिया जलाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप नदी पर रहते हैं तो मगरमच्छ से मित्रता करें। जोखिम उठाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। अच्छी सोच इंसान को हमेशा अच्छा रास्ता दिखाती है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्मों से महान होता है।
0: तो प्यारे बच्चों, अभी हमने प्रतिष्ठा से महापुरुषों के द्वारा कहे गए ये अनमोल वचन सुने। तो बच्चों, आप भी इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास जरूर करें।

0: प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई अनमोल वचनों पर। और अब बच्चों, क्या आपको अपने बचपन के वो दिन याद हैं, जब रात को दादी या नानी हमारे सिर पर हाथ फेरते हुए कहती थी, एक था राजा और एक थी रानी। और ये सुनकर हम उनके पास बैठ जाया करते थे और वो जो कहानी सुना रही हैं वो ध्यान से सुनने लगते थे, है ना प्यारे बच्चों। कहानियां हमें हमेशा याद रहती हैं और उनसे मिलने वाली सीख को हम अपने जीवन में लागू भी करते हैं, है ना। तभी तो बच्चों बाल वाटिका भी लेकर आता है सुनो कहानी क्रम। तो चलिए आज सुनते हैं एक सीख भरी कहानी जतिन की जुबानी।
1: एक दिन गर्मी के मौसम में एक छोटी सी चींटी नदी के किनारे पानी पीने गई। पानी तेज बह रहा था। चींटी जैसे ही पानी पीने झुकी, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। वह डूबने लगी और घबराकर चिल्लाई, बचाओ, कोई तो बचाओ। पास की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में संघर्ष करते देखा। वह तुरंत उठकर गया और एक पत्ता तोड़कर पानी में दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर किनारे आ गई। उसने राहत की सांस ली और कबूतर को दिल से धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद वही कबूतर एक पेड़ पर बैठा आराम कर रहा था। तभी एक शिकारी चुपचाप आया और कबूतर पर निशाना साधने लगा। चींटी यह सब देख रही थी। मुझे अपना एहसास चुकाना है, चींटी ने सोचा। वह धीरे धीरे शिकारी के पैर पर चढ़कर जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी बंदूक हिल गई और गोली हवा में चल गई। गोली की आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया और अपनी जान बचा ली। कबूतर ने उड़ते उड़ते नीचे देख चींटी को मुस्कुराकर सिर हिलाया। दोनों ने समझ लिया। तो इस कहानी की सीख है, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, मदद का बदला मदद से ही मिलता है।
0: तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में नेकी का रास्ता जरूर अपनाएं और सदा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने का प्रयास जरूर करें। और बच्चों, कहानी सुनने से जहां हमें सीख मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर खेलने कूदने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए बच्चों, हो जाए कविता खेल कूद पर ही, जिसे सुना रही है प्रियांशी।
2: खेल खेल में हंसना सीखो, सीखो खेल खेल में रोना, खेल खेल में पढ़ना सीखो, खेल खेल में सीखो लिखना, नित नए संघर्ष पथ में सीखो चलना, खेल खेल में जिंदगी के हर पल को सीखो जीना, गिरकर उठना, उठकर गिरना, तान सीना पर संघर्ष पथ में सीखो आगे बढ़ना, हो जीवन चाहे कितना भी कठिन, सीखो जीवन में संघर्ष करना, जिंदगी भी ये खेल ही है, इस खेल में कभी दुख में रोना है तो कभी खुशियों में हंसना है, सीखो नित नए संघर्ष पथ में कदम से कदम मिलाकर चलना।
0: हाँ तो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, खेलना कूदना भी है बेहद जरूरी, और खेलने कूदने पर हमने बात करी ही है। तो चलिए आज खेल खिलाड़ी अंक में जानते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के बारे में गौरव से।
3: माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा आने वाले समय में उनका और उनके परिवार का नाम रोशन करे। उत्तराखंड में भी कई ऐसे युवा चेहरे हैं जिन्होंने अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में पूरे भारत का नाम रोशन किया। लक्ष्य सेन ने अपने खेल की शुरुआत अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू की और उनके कोच और कोई नहीं उनके पिता ही रहे हैं। लक्ष्य सेन का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में 16 अगस्त 2001 में हुआ था। लक्ष्य सेन के पिताजी का नाम डीके सेन है। लक्ष्य सेन के माता का नाम किरण सेन है, जो कि स्कूल में एक टीचर है। उनके दादा चंद्रलाल सेन अल्मोड़ा में बैडमिंटन के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। लक्ष्य सेन को इनके पिताजी ने महज 4 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। इतनी कम उम्र से ही बैडमिंटन खेलने के कारण ही लक्ष्य सेन ने 2016 में जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लक्ष्य सेन ने अपने जीवन में अभी तक कई कठिन चुनौतियों और बाधाओं का सामना किया है, परंतु अपने लक्ष्य से कभी नहीं डगमगाए और न ही हार मानी और अपने लक्ष्य पर निरंतर डटे रहे। आज वह भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक और विश्व की बैडमिंटन के रैंकिंग में नंबर 6 पर काबिज। आज के समय में हमारे देश भारत में स्पोर्ट्स से जुड़ी खिलाड़ी अपने देश का नाम बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी लक्ष्य सेन भी हैं, जो बैडमिंटन के स्पोर्ट से जुड़े हैं। लक्ष्य सेन भारत के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी में से एक हैं, जिन्होंने 2016 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2017 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2018 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2019 विश्व टूर फाइनल्स में स्वर्ण पदक, 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2022 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक, 2023 ऑल इंग्लैंड ओपन में रजत पदक जीता।
0: तो बच्चों, जाना ना आपने खेल खिलाड़ी अंक में लक्ष्य सेन के बारे में गौरव से। बच्चों, आप नन्हे मुन्ने बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद जरूर करें और अपने राज्य के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, ये तो बात करी हमने खेल कूद पर,

0: की इस कविता से।
1: रिमझिम रिमझिम बारिश आई, रंग अपने खुशियाँ लाई, काले काले बादल छाए, ठंडी ठंडी पवन भी लाए, टप टप करती बूंदे गिरती, सूखी धरती हंसकर खिलती, पेड़ पौधे झूम झूम गाए, नई उमंगे मन में लाए, मोर पंख फैला कर नाचे, कोयल मीठे सुर में गाए, चिड़िया अपने पंख पसारे, नील गगन में गीत सुनाए, कागज की नावें तैर रही हैं, बचपन की मुस्कान कह रही है, छोटी छोटी खुशियाँ चुन लो, हर पल को तुम जी भर जी लो, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू मन को देती मीठी आरजू, इंद्रधनुष जब नभ में आए, सात रंग सपने सजाए।
0: हाँ तो नन्नी मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चों, ये रिमझिम रिमझिम बारिश साथ में खुशियाँ तो लाती है, और लाती है कुछ कीट पतंग, है ना, और इनमें सबसे हानिकारक होता है मच्छर, है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, बारिश के मौसम में जब इधर उधर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से पनपने लगते हैं मच्छर, और इनके काटने से हमें गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है ना। तो बच्चों, इस बारिश के मौसम में आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जब भी आप अपने स्कूल से घर आएं या आप बाजार से घर आएं, तो अपने हाथों को साफ से साबुन से धो लें, क्योंकि बच्चों बारिश में कीटाणु बहुत तेजी से फैलते हैं। और जब भी आप बाहर से खेल कर आएं या खाना खाने बैठे, तो अपने हाथों को जरूर धो लें। घर का बना हुआ ही ताजा खाना खाएं, उबला हुआ और फिल्टर का पानी पिएं। और बच्चों, जब आप शाम को खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें, लंबे समय तक गीले कपड़े या गीले मोजे ना पहने रखें। साथ ही बच्चों, जब भी बारिश में आपको बाहर निकलना हो तो छाता या रेनकोट ही लेकर जाएं, और मौसमी फल सब्जियों का सेवन तो जरूर करें। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।

हाँ तो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो हमने बात करी बारिश के मौसम पर। और अब बच्चों आपको ये भी बता दें कि इसी सप्ताह 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाएगा। बच्चों विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि बढ़ती जनसंख्या और समाज, राष्ट्र और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना और जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु जन जन को शिक्षित करना। प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति ने माँ और बच्चे की मृत्यु दर में काफी हद तक कमी ले आई है और इनका जीवन काल भी बढ़ाया है। परंतु बच्चों, ये बढ़ती हुई जनसंख्या जलवायु परिवर्तन के लिए एक चुनौती है। इसीलिए स्वस्थ शिक्षित समाज के गठन हेतु आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए लोगों में बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाले जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करना बेहद जरूरी है।

0: प्यारे बच्चों, ये तो हमने जाना जनसंख्या दिवस के बारे में। और अब बच्चों, बात हो जाए पशु पक्षियों की, तो चलिए पशु पक्षियों पर ही ये कविता सुनते हैं शिवोय से।
1: भगवान ने इंसान बनाया, फिर पशु पक्षी से इस प्रकृति को सजाया। क्या खूब चित्रकारी की पशु पक्षी पर, रंगों को आकार दिया जमीन पर, संतुलित किया संसार हमारा। भिन्न भिन्न पशु पक्षी द्वारा, पशु पक्षी है मित्र हमारे, बहुत कुछ मिलता हमको उनके द्वारे। दूध से हमको ताकतवर बनाते, ऊन से हमको ठंड से बचाते, इनसे जीवन में है खुशहाली, इनके बगैर ये जीवन है खाली। ता बिल्ली कौवा गाय, संग हमारे नाचे गाय, शेर चीता हाथी बंदर, रहते सब जंगल के अंदर। पशु पक्षी की रक्षा करना है हमको, दुनिया की इस सुंदरता को बचाना है हम सबको। धन्यवाद।
0: सच कहा नन्हे शिवोय आपने, हमें पशु पक्षियों के साथ प्रेम भाव जरूर बनाए रखना चाहिए। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं, इन पशुओं से मनुष्यों में भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिन्हें हम जूनोटिक बीमारी कहते हैं। और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। बच्चों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है आम जनमानस को जूनोटिक बीमारी के खतरे के बारे में जागरूक करना। तो बच्चों, आप भी जानवरों के साथ जब भी खेले कूदे तो सबसे पहले आप अपने हाथों को साफ से अवश्य धो लें और अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।

0: तो बच्चों, ये तो हमने जानी बहुत सी बातें विश्व जूनोसिस दिवस के बारे में। और अब बच्चों, आज पशु पक्षियों के अद्भुत संसार क्रम में जान लेते हैं मैना पक्षी के बारे में हिमानी से।
1: मस्ती पसंद करने वाला और आनंदित प्राण। भारतीय साहित्य में मैना पक्षी का वर्णन कई अलग अलग तरीकों से किया गया है। पीत नेत्र, जिसकी आंखें पीली हैं, चित्र नेत्र, सुंदर आंखें, और पीत पद, जिसके पैर पीले हैं। इन सामाजिक पक्षियों को बहुत ही कम उम्र में आसानी से पालतू बनाया जा सकता है और इन्हें सामान्य से बड़े पिंजरे की आवश्यकता होती है। पीले पैर और पीली चोंच से पहचाने जाते हैं। मैना आक्रामक हो जाती है और अन्य पक्षियों को भगा देती है। घने जंगलों को छोड़कर ये लगभग सभी तरह की जगहों पर पाई जा सकती है। भारत और अफ्रीका के अलावा इन पक्षियों को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और हवाई में भी व्यापक रूप से पेश किया गया है। वे अक्सर शोर मचाते हुए झुंड में घूमते हैं। मैना एक सर्वाहारी पक्षी है।
0: तो बच्चों, पशु पक्षियों के अद्भुत संसार क्रम में अभी हमने जाना मैना पक्षी के बारे में हिमानी से। बच्चों, इन पक्षियों का ये कलरव यूं ही बना रहे, ये चहचहाती रहे, इसके लिए हम सभी को पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, साथ ही इनके लिए दाना पानी भी अवश्य रखना चाहिए, तभी तो बच्चों इन पशु पक्षियों का अस्तित्व बना रहेगा, है ना?
2: चुन चुन करती आई चिड़िया।
0: इस खूबसूरत धरा प्रकृति पर ही एक कविता लेकर हमारे साथ हैं वंशिता।
3: जल पड़े हैं बादल घने, गर्जन से कांपे धरती गगन, आया है फिर कोई तूफान, ले चला सबको अनजाने पर, पेड़ों की जड़ें हिलने लगी, छतें उड़ चली नभ की ओर, नदियां भी बहकने लगी, डर समाया हर एक छोर पर, देखो उस दीप को जलता झोंकों से जो खेल रहा, छोटा सा पर निडर खड़ा है, हिम्मत से सब झोल रहा, आंधियां आती रहेंगी, जीवन में तूफान भी बार बार होंगे, पर जो टिके रहे सत्य पथ पर, वही असल में वीर होंगे।
0: सच है बच्चों, जब प्रकृति लेती है करवट, गूंज उठता है सारा आसमान। प्यारे बच्चों, प्रकृति के सबसे भयावह दृश्यों में से एक है तेज आंधी और तूफान का आना। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा होती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नुकसान पहुंचाती है। तभी तो बच्चों, आंधी और तूफान जैसी आपदाओं से बचाव के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को रेत और धूल भरी आंधी का मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और जिसको मनाने का एकमात्र उद्देश्य है रेत और धूल के तूफानों के खतरों और सतत विकास पर उनके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जन जन को जागरूक करना, जिससे कि बच्चों इनसे होने वाली हानियों को कम किया जा सके।

0: आज की बाल वाटिका से विदा लेने का, मैं आपकी दीदी मेघा रावत लेती हूँ आपसे विदा। और अब मिलेंगे अगले रविवार आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियों के संग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
1: जय हिंद।
2: बच्चे सुन रहे थे बाल वाटिका। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं समाचार दिल्ली केंद्र से। कुछ ही पलों में रिले होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के इलाकों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
4: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
3: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू हो जाएगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
4: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
3: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर

190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। श्रोता, आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम गीत निर्झर।

बारिश की रिमझिम फुहार, फरमाइशी नगमों की सुरमई बहार, सुर सरगम सजा है गीत निर्झर में आज फिर एक बार। सभी श्रोताओं का गीत निर्झर में खूब खूब स्वागत सत्कार, कीजिए स्वीकार अपने रेडियो दोस्त संजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार।

तो श्रोताओं, मुकेश की आवाज़ में छलिया फिल्म का गाना आपने सुना। कमर जलालाबादी के बोल थे और तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सुनना चाहा था बड़ा।

बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे बेबी किट्टू। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। फुटानी चौक नरहन स्टेट से लल्लन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन पारासर, बेबी आराध्या लल्लू। मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन पारासर, अमित सुमित छोटू, बीके सुरगनैया। रेलवे कॉलोनी भटिंडा से हमारे श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। अगला गाना हमने लिया है श्रोताओं की फरमाइश पर बंदिश फिल्म से। आशा भोसले, किशोर कुमार ने आवाजें दी हैं, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत है। सुनना चाहा है एरोड्रम थाना लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश है बंदिश फिल्म का ये दो गाना।

गीत निर्झर में अगला गाना आपको सुनवाएं, उससे पहले आप सभी श्रोताओं की फरमाइश शामिल करते हैं। बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी और उतनी ही सुंदर लिखावट के साथ हमेशा हमें खत भेजते हैं गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता एम फारूक कादरी शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख, मिर्ज़ा नसरीन बेगम। जमशेदपुर से हमारे श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, शाहजी नगर देखतूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता भाकरे। रेडियो हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रोता हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, नाता नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नौमान सुलेमान शेख, मोहम्मद कलीम। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हलाकू फिल्म का गाना। शैलेंद्र ने बोल दिए हैं और सुरों से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम गीत निर्झर। अगला गाना जो हमने लिया है वो आप सभी की फरमाइश पर है, खानदान फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, बोल नक्श लयालपुरी के, तर्ज बनाई है खयाम ने। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, दीपक, सचिन कटारिया, कृष्णा, बिराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका, श्रीमती प्रभा कटारिया और मास्टर आदर्श। शाहजी नगर देखतूर से संतोष सुनैना, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम, भवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर देविरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। तो आप सभी सुनिए अपनी फरमाइश का ये खूबसूरत सा गाना।

बहुत खूबसूरत सा सुंदर लिखावट के साथ एक और पत्र आया है हमारे पास मेन रोड तेलहारा से। प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, सुजाता पोहरकार का राजनगर कांति निकेतन से। कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा, गोल्डी रानी मिश्रा, मास्टर रुद्र गुप्ता राजनगर गांधी चौक से, रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता गुप्ता, मेनका, पलक, पंखुड़ी, माधवी, साध्वी, हैप्पी, गुनगुन, चुलबुल, रेणु, ज्योति, शालू, दीपशिखा, अर्चना। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आप सभी की फरमाइश पर पेश है पारस मणि फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। असद भोपाली के बोल हैं और सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाला बाजार से अल्मोड़ा से बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज, अमान, नीलोफर, शन्नो, शब्बो। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, भाई सुच्चा पाठक। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से सुमन, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, सुजला और रेयांश ठाकुर। आप सभी की फरमाइश पर पेश है

जी हाँ, श्रोताओं का बहुत सारा प्यार बरस रहा है उनके खतों के ज़रिए, उनके मैसेजेस के ज़रिए। तो अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर चांदनी फिल्म से लता मंगेशकर, बाबला मेहता की आवाज़ों में आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीत से सवारा है शिव हरी ने। फरमाइश राजस्थान सादुल शहर से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। राजस्थान से ही रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से हमारे श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। उत्तम नगर दिल्ली से हमारे श्रोता हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, राही श्रीमती सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर, बहादुरा नागपुर आकार हाइट्स से हमारे श्रोता हैं श्रीमती वैशाली शैलेश गवहाणकर, श्वेता सुमित गवहाणकर, ध्वनि गवहाणकर, परी बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहाणकर, प्रणीता गवहाणकर, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल, रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। आप सभी की फरमाइश पर पेश है चांदनी फिल्म का ये खूबसूरत गाना।

मंचला रेडियो लिसनर्स क्लब अकोला से के शरद पाचपोर, श्रीमती शोभा पाचपोर, बेबी वैदेही, विहान बाबू, रश्मि, अक्षय और अभिनव पाचपोर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल बजाज, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा, सुमन, कीर्ति, भारती, माधुरी और किरण, करणवीर हाउस भूचौ कैंचिया बठिंडा पंजाब से हमारे श्रोता हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दामन और अभिजोत। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है पत्थर के फूल फिल्म का ये गीत है। एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। शब्दकार हैं रविंद्र रवैल और तर्ज बनाई है राम लक्ष्मण ने।

और अब श्रोताओं, प्रोग्राम के आखिर में बरसाते हैं फुहार एक प्यारे से नगमे के साथ, जिसे हमने लिया है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। गायिका है आशा भोसले, गीतकार गुलजार, संगीतकार खयाम। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी, राय कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, फारूख भाई, लल्लन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी, ऐशबाग, पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी पलक पंखुड़ी, कांति निकेतन राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद, दादा ठाकुर, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हमारे श्रोता हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंदरजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, यवतमाल महाराष्ट्र से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके,

नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहाकर, निर्मला नहावकर, विशाल मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान आशीष और इनके साथी। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश है ये गीत जिसे हमने लिया है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। फरमाइश आप सभी की है।

इस गीत को सुनना चाहा है डोंडी लोहारा पालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, जयदेव राधिका, तुषार तामोरिया, डॉली मास्टर अल कबीर, बेबी पूजा तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया, ग्राम बन बघेरा से योगेश सारवा, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा।

और इस गीत को सुनना चाहा है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर अपेक्षा, अमीन देवान, आदेश कुमार काले ने।

तो श्रोताओं, फुहार की बरसने का आप खूब मजा लीजिए। फिलहाल इस समय अंजु पांगती को दीजिए इजाजत आज के गीत निर्झर से। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं।

पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। आगाज कर रहे हैं शोभा गुर्टू की गाई इस ठुमरी के साथ।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सबरंग में लीजिए अब आनंद लीजिए रंगीली रुत का, उस्ताद सुल्तान खां और चित्रा के साथ।

सब रंग में कई रंग इस समय आप नगमों के गजलों के सुन रहे हैं। तो अब पेश है रूना लैला की आवाज़ में ये नगमा।

तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। यह गज़ल पेश है मुन्नी बेगम की आवाज़ में,

श्रोता भी सुन रहे थे सबरंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को है अगला प्रसारण। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: वो है इनका काम। ये जानना चाहते हैं फ्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सुराजी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते बहन जी।

0: धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए और समाज में बड़ा परिवर्तन है।
1: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
0: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गांव में या खेतों में ही बीता है, हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ, तो चंडीगढ़ पुलिस में वहां की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहां बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं और वहां से मेरा मन भी प्रभावित हुआ। जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
1: तो ये कब शुरुआत की आपने?
0: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
1: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं?
0: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
1: जी,
0: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
1: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
0: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारे स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के, अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते
1: हैं। कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए,

0: की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव-गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर। जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के मैं ड्यूटी काम अपेक्षा करते हैं, अगर ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है। और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है, तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है, तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले कि हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। तो जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी है। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग, भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है, उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और

0: बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं। गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य के मन को विचार को हिला दिया, समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते

0: था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तितर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहने युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया पेड़ लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उससे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायती या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन
1: का
0: रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की, वो

0: तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूलन का पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी

0: अक्सर पुराने कपड़े थैला प्रयोग करते थे और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी एक एक्सटर्नल, वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गांव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण की गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है।
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है, लेकिन समाज की बात करें लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा, एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है,
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता है, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं।
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता, अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने, और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं

0: इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
1: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
0: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
1: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालू मर्दा थी मक्का कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए, और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़ा प्रेरणा मिलती है।
0: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
1: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
0: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
0: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.eirnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। प्रस्तुत है समोस्वरों में देशगान।

अभी आप देश गान सुन रहे थे, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सनीभाई, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में, नया दौर फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इस गीत के बोल लिखे थे, संगीत था ओपिन नैयर का। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौर और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS। राहत इंदौरी के लिखे हुए बोल हैं, अनुमलिक का संगीत।

सैनी भाई मुन्ना भाई MBBS फिल्म के इस गीत के बाद आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं परिणीता फिल्म से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की, गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे, संगीतकार शांतनु मोइत्रा।

सैनी भाइयों, कार्यक्रम के समापन में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में गुलजार का लिखा ये गीत। संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है फिजा।

फिजा फिल्म के इसी दो गाने के साथ सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, अनुमति दीजिए। जय हिंद।

सैनिकों के लिए अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर अनीता सेन की गाई ये कजरी। बोल हैं, झमक झुकी आई बदरिया कारी।

झमक झुकी आई बदरिया कारी, इन बोलों पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनीता सेन की गाय कजरी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी पर पहाड़ी धुन। आपके साथ तबला संगत की है अनिंदु चटर्जी ने।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी पर पहाड़ी धुन। आपके साथ तबला संगत की थी अनिंदो चैटर्जी ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

नमस्कार श्रोताओ, मेरी पसंद कार्यक्रम के साथ मैं हूं उर्मिला जोशी। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम का ये सफर है हमारे दिल के इंद्रधनुषीय रंगों के साथ। जी हाँ दोस्तों, कभी सोचा है कि किसी के कहे एक शब्द से, किसी की उठती गिरती एक नज़र से, किसी गीत की धुन से कैसे पल भर में हमारी आंखें नम हो जाती हैं। कई बार हमारा इन सब से बहुत गहरा नाता नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी की भावनाएं हमारे दिल को छू जाती हैं। ये सब इसलिए दोस्तों क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने का मतलब है महसूस करना। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में महसूस करें एक दूसरे के दिल की भावनाओं को कुछ खूबसूरत सुरीले गीतों के साथ।

दोस्तों, भावनाएं जो ना दिखाई देती हैं, ना छुई जा सकती हैं, फिर भी ये पूरी दुनिया चलाती हैं। प्यार की वजह से हम मुस्कुराते हैं, गुस्से में हम चिल्लाते हैं और उदासी में हम चुप हो जाते हैं। भावनाएं आहत होती हैं तो हम रोने लगते हैं, और कई बार लोग किसी के रोने को कमजोरी समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। रोना कोई कमजोरी नहीं, ये संकेत है कि आपका दिल जिंदा है, अभी पत्थर नहीं है, धड़कता है और महसूस करता है। इसलिए उदासी को दबाइए मत, उसे बह जाने दीजिए, क्योंकि उदासी के बाद फिर से जग उठती है उम्मीद।

दोस्तों, यादें जो हमारी भावनाओं के तार छेल जाती हैं, कड़वी भी होती हैं और मीठी भी होती हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ रिश्तों के एहसास कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे वो रिश्ता हो या ना हो। इसलिए जब भी किसी की याद दस्तक दे तो दिल का दरवाज़ा ज़रूर खोलिए और मुस्कुराकर उन एहसास भरे पलों का स्वागत कीजिए, क्योंकि वो पल उस वक्त ज़रूर खास रहे होंगे जो आज याद बनकर दिल के दरवाजे पर खड़े हैं।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दोस्तों, कभी अगर हम अपनी भावनाओं पर गौर करें तो कितनी खूबसूरती है इनमें। जिंदगी बसती है इन्हीं भावनाओं में। कभी खुशी का एहसास जो सिखाता है कि मुझे बांधने की कोशिश ना करो, बस जियो उमंग और उत्साह से। तो वहीं सुकून का एहसास जो थके हुए कंधों को सहारा देता है और कहता है, थोड़ा सा थम जाओगे तो वाकई सिमट कर मेरी बाहों में आ जाओगे। ये सुकून और खुशी एक ही सिक्के के पहलू पर एहसास बिल्कुल अलग।

और दोस्तों, ये खुशी, गम, सुकून, याद, गुस्सा, उदासी, रोना, ये सब एहसास एक जगह आकर मिल जाते हैं जब आप प्रेम को महसूस करते हैं। प्रेम हमारी जिंदगी का सबसे नाजुक एहसास है। ये वो एहसास है जो हमें अपने साथ ही साथ किसी और के लिए जीना सिखाता है, खुद के साथ ही साथ दूसरे की कद्र करना सिखाता है, जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है, जो सोच समझ कर नहीं खुद ब खुद हो जाता है, एक उम्मीद का दिया जो हमेशा हमारे दिल में जलता है।

दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अपनी किसी भी भावना से भागिए मत। गुस्सा आए तो गुस्सा कीजिए, पर किसी को तोड़िए मत। उदास हो तो रो लीजिए, पर खुद को तोड़िए मत। खुशी हो तो दिल खोल कर इजहार कीजिए, पर किसी का दिल दुखाइए मत। प्यार हो तो कह दीजिए, पर किसी को सताइए मत। खुशी, सुकून, प्यार, याद, गुस्सा, उदासी, उम्मीद, हिम्मत, सब आपके हैं और जिंदगी जीने में मदद करते हैं। बस समझना इतना है कि कब कौन सी भावना को आगे आने देना है। याद रखिए, भावनाओं से लड़िए मत, उन्हें जिए, क्योंकि जो दिल महसूस नहीं करता वो धड़कता नहीं, बस जीवित होता है। इसलिए एक दूसरे के दिल की जरूर सुनिए।

तो श्रोताओं, ये थी आज की मेरी पसंद, अपनी पसंद के चंद फिल्मी गीतों के साथ। कल इस कार्यक्रम में फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी उर्मिला जोशी को दीजिए आज के मेरी पसंद कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

मेरी पसंद, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत करते हैं बहनों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में। आप सभी श्रोता बहनों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। आधे घंटे के इस खूबसूरत सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी संगीता दिलारा। इन्हीं उम्मीदों और दुआओं के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और हमारे साथ इस वक्त सुन रही होंगी अपना कार्यक्रम। तो बहनों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहनों समय बदल रहा है और समय के साथ साथ माँ की भूमिका भी नए आयामों को छू रही है। आज की माँ केवल परिवार की धुरी नहीं है बल्कि अपने सपनों, जिम्मेदारियों और रिश्तों के बीच एक संतुलन बनाने वाली सशक्त व्यक्तित्व भी है। और आज कार्यक्रम में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर, वर्तमान समय में माँ की बदलती भूमिका पर हमने बातचीत की श्रीमती मीनू बिष्ट जी से, जो कि एक शिक्षिका है अल्मोड़ा में, साथ ही सशक्त व्यक्तित्व और प्रेरणादायी माँ हैं। तो आइए उनसे की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। बहनों माँ केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि ममता, त्याग, संस्कार और असीम धैर्य का प्रतीक है। समय के साथ परिवार, समाज और जीवन शैली में कई बदलाव आए हैं और इन बदलावों के साथ माँ की भूमिका भी बदलती गई है। आज की माँ बच्चों की पहली गुरु होने

0: के साथ साथ उनके मित्र, मार्गदर्शक और सबसे बड़ी प्रेरणा भी है। इन्हीं बदलती भूमिकाओं और मातृत्व के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जो एक माँ होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हैं मीनू बिष्ट जी अल्मोड़ा से। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मीनू जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम, नमस्कार।
0: मीनू जी, कहा जाता है कि माँ बनने के बाद एक स्त्री का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आपके जीवन में मातृत्व ने क्या बदलाव लाए और इस सफर ने आपको क्या सिखाया?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक माँ बनने के बाद एक स्त्री का जीवन पूरे तरीके से बदल जाता है। और एक माँ जब मैं बनी तो मेरा जीवन भी बदला। एक सामान्य सी महिला माँ बनने के बाद महसूस करती है कि उसके अंदर कितनी सारी छुपी हुई ताकतें हैं। वो अपने बच्चे को भौतिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित करने के लिए हर कोशिश करती है और इसी कोशिश में उसे हर दिन हर पल ये पता चलता रहता है कि मेरे अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं। और मेरे लिए भी एक माँ होने के नाते ये काफी सकारात्मक सफर रहा है। और माँ बनने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा मजबूत और जीवन के प्रति ज्यादा आशावान और सकारात्मक महसूस करती हूँ।
0: जी, आपके अनुसार आज की माँ की भूमिका पहले की तुलना में किस प्रकार बदली है? आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
1: जी, वर्तमान समय की बात करें तो माँ की भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। बहुत सी महिलाएं वर्किंग हैं, उन्हें घर और बाहर दोनों ही जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है। और जो महिलाएं घर पर ही रहकर बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं, वो भी पहले की तुलना में बाहर के कार्य कर ही रही हैं और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निभा भी रही हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान में महिलाएं जो है ज्यादा आत्मनिर्भर हैं और अपने अपने व्यक्तित्व और अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इस काम को अच्छे से कर रही हैं।
0: और मैम, आज की माताओं के सामने बच्चों की परवरिश को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं?
1: जी, आज की माताओं के सामने बच्चों की परवरिश को लेकर मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती उनकी सुरक्षा को लेकर के है। सबसे पहले तो बच्चों की सुरक्षा, चाहे वो घर से बाहर हो या फिर डिजिटल सुरक्षा हो या फिर आजकल जो है बच्चे नशे की गिरफ्त में भी काफी आ रहे हैं, तो हम लोगों को इन सारी चीजों से अपने बच्चों को जो है बचाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारी लाइफ का एक पार्ट बनती जा रही है। डिजिटल जो हम लोग गैजेट्स प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ साथ भी जो है हमें देखना है कि हमारे बच्चे किस संगत में जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो इन सब चीजों से अपने बच्चों को सुरक्षित रखना जो है मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है।
0: और आपने बात की कि आजकल डिजिटल का दौर है, तो इसमें बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है कि आज के डिजिटल दौर में जब बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से घिरे रहते हैं, ऐसे में एक माँ की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और इंटरनेट तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं और हम लोगों को इससे बच्चों को अलग करना बिल्कुल असंभव सा हो गया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है या मनोरंजन, बच्चों को कहीं ना कहीं जो है डिजिटली रूबरू होना ही पड़ रहा है। पर हम लोग अब बच्चों की उम्र के अनुसार जो है उनको अगर हम इन सब चीजों के प्रयोग करना सिखाएं तो शायद सही रहेगा। जैसे छोटे बच्चों के लिए डिजिटल जो वस्तुएं हैं उनका अलग मतलब है और जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं उनके लिए अलग है। तो हम लोग एज के हिसाब से अगर बच्चों को जैसे कभी सिक्योरिटी लॉक लगा करके या ऐसे कई सारे प्रोटेक्शन मोड हैं, उनको धीरे धीरे अपनी निगरानी में रख के बच्चों को इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स अगर सिखाते रहे तो शायद धीरे धीरे बच्चे इनका सही यूज करना सीख जाएंगे। और हम बीच बीच में उनको एकदम ना टोक के धीरे धीरे जागरूक करते रहे कि इनके क्या फायदे और नुकसान है, तो शायद धीरे धीरे बच्चे इनका सही तरीके से उपयोग करना सीख पाएंगे और इनके नकारात्मक जो साइड्स हैं उनको पता चलता रहेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को, मतलब माँ को भी या पेरेंट्स को भी जो है डिजिटली अपडेट होना बहुत जरूरी है समय समय पर।
0: जी, आपने बात की कि जो माताएं हैं उनकी जिम्मेदारियां होती हैं बच्चों को देखना, ध्यान देना। तो अक्सर होता क्या है मैम कि महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों में खुद को पीछे छोड़ देती हैं। आपके अनुसार एक माँ के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना कितना जरूरी है? एक माँ होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी?
1: जी संगीता जी, मैं तो ये कहूंगी कि माँ ही नहीं बल्कि हर मनुष्य को जो है सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य ही जो है स्वस्थ परिवेश को और स्वस्थ माहौल का निर्माण कर सकता है। और माँ के लिए तो ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे या अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने बच्चे और अपने परिवार के और अपने आसपास के लोगों के साथ भी हम सही सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक स्वस्थ शरीर और दिमाग ही जो है स्वस्थ सोच और स्वस्थ माहौल के लिए उत्तरदायी है। तो जरूरी है मैम कि हम लोग जो है अपने स्वास्थ्य का, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, ध्यान रखें।
0: और मीनू जी, बच्चों में अच्छे संस्कार और पारिवारिक मूल्यों को विकसित करने के लिए माताओं को किन-किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए?
1: इसके लिए संगीता जी मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छे संस्कार और पारिवारिक माहौल जो है हम एक दिन में तो बच्चों को दे नहीं सकते। इसके लिए हमको धीरे धीरे हर रोज हर पल प्रयास करना पड़ेगा और परिवार के लोगों के बीच में बच्चों को शामिल करना पड़ेगा हर छोटी बातों में। और जब भी वो कोई गलत बात करते हैं तो उनको उसके बारे में जो है हमें बताना पड़ेगा कि ये गलत है और उसके दुष्परिणाम उसको बताने पड़ेंगे। ये भी उम्र के अनुसार ही होगा कि बच्चा कितना समझ सकता है, उस हिसाब से हम बच्चे को बार बार जहाँ पे गलत है तो उसे टोकना पड़ेगा, जहाँ पर वो अच्छा कर रहा है तो उसको हमें थोड़ा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और इस तरीके से धीरे धीरे हम उसमें बचपन से ही, शुरुआत से, पहले दिन से ही हम जो है बच्चे में अनुशासन अगर डालेंगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो बच्चे के और हमारे दोनों के ही व्यवहार में आ जाता है। और यही संस्कार है मुझे लगता है। तो एक दिन में तो नहीं हो सकता, रोज ही हमें कुछ ना कुछ इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और ये छोटी छोटी बातें जो है धीरे धीरे बच्चा अपनी व्यवहार में उतार ही लेता है।
0: जी, और मीनू जी, आज ये महिलाएं अंदर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, कई महिलाएं कामकाजी हैं, तो इस
1: जी
0: भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के साथ समय बिताना मुश्किल भी होता जा रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण
1: जी
0: है इस समय बच्चों के साथ समय बिताना, और माताएं इसे कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं, कैसे समय निकाल सकती हैं इसके लिए?
1: जी संगीता जी, इसमें ये है कि बच्चे के साथ समय बिताना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ समय बिताएंगे तभी हम इमोशनली बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और जो भी हमारे बुरे अच्छे अनुभव हैं धीरे धीरे हम उनके साथ शेयर करते रहें। और अगर हम उनके साथ बैठेंगे, समय बिताएंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारे बच्चे की क्या परेशानियां हैं या उसकी क्या अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं। और जैसा आपने कहा कि महिलाएं कामकाजी हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत वक्त बिताना तो साथ मुमकिन नहीं है, लेकिन जो भी वक्त हम लोगों को मिलता है खाते समय जैसे, या कभी हम लोग जब भी कभी फ्री हैं, कभी हम कहीं जा रहे हैं, तो बच्चे के साथ थोड़ा बहुत बैठ करके कुछ भी, जो दिन भर का कुछ दिनचर्या, उनसे बात करके हम लोग उनसे कनेक्ट रह सकते हैं। और उनको ये बार बार हमें एहसास कराना होता है कि चाहे हम बहुत ज्यादा समय उनके साथ नहीं भी बिता रहे हैं, तो हम उनके साथ हमेशा हैं उनके आसपास, और जब भी कभी उन्हें जरूरत हो तो हम वहां मौजूद हैं। तो इसके लिए जब भी बच्चे को, जैसे कभी वो स्कूल जाने वाला बच्चा है या कभी बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चा कभी भी हमें आवाज लगाता है या स्कूल से कोई मीटिंग आती है कुछ भी, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें जाएं, है ना, अपनी उपस्थिति दें, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे अच्छे बुरे पलों में हमारे साथ हैं। और भी कई तरीके हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटी छोटी बातों से हम अपने बच्चों के साथ जो है इमोशनली और फिजिकली कनेक्ट रह सकते हैं।
0: जी, और इससे बच्चे जो हैं अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने से भी डरेंगे नहीं, और मुझे
1: जी
0: लगता है कि सारी बातें वो हमें बता सकते हैं।
1: जी
0: जी, और मैंने देखा है मीनू जी कि कई माताएं ऐसा महसूस करती हैं कि वो बच्चों को, परिवार को पूरा समय नहीं दे पा रही हैं, किसी की
1: जी
0: ऐसी जो जॉब होती है उसमें, तो जिससे उनमें अपराध बोध भी आ जाता है। ऐसे में आप
1: जी
0: उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक कामकाजी महिला हैं?
1: जी जी मैम, कि थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन अपराध बोध बिल्कुल नहीं लेना है। तो वही है कि जब कभी भी, जैसे बच्चा भी अपने में बिजी है, हम भी बिजी हैं, तो जब कभी भी हम साथ होते हैं थोड़ा बहुत, तो बच्चे के साथ दिन भर में अगर हम थोड़ा बहुत भी पूछ लेते हैं आपस में कि आज क्या हुआ, कैसा रहा दिन, तो इन छोटी छोटी बातों से बच्चा अगर अपनी बात शेयर करता है, कुछ हम अपने बारे में बता दें, तो ये चीजों के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्पेशली कोई एक टाइम निकाल करके हम साथ एक जगह पर बैठे और तभी ये बातें होंगी। तो हम लोग अपना काम करते करते या कुछ भी ऐसे भी बीच बीच में बच्चों के साथ कनेक्ट होकर के समय निकाल सकते हैं। अपराध बोध लेने से तो और भी स्थिति जो है बिगड़ जाएगी। तो अब हम भी बातों बातों में बच्चे को हमें थोड़ा ये भी एहसास दिलाना पड़ेगा कि हमारा भी काम बहुत जरूरी है, और जब हम काम करेंगे तो हम और ज्यादा बच्चे को सपोर्ट कर पाएंगे। और धीरे धीरे जब परिवार का माहौल देख के बच्चे फिर समझने लग जाते हैं, वो हमारी परिस्थितियों को भी समझते हैं, क्योंकि वो इन्हीं परिस्थितियों को देख करके बड़े हो रहे हैं।
0: जी, और
1: जी
0: आखिर में बदलते समय में बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारी श्रोता बहनों से?
1: जी संगीता जी, इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। मैं भी एक परफेक्ट माँ तो नहीं हूँ, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ और हर दिन सीख ही रही हूँ कुछ ना कुछ। तो जो भी हमारा व्यक्तित्व है, हर माँ का, हर इंसान का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, अपना एक अलग व्यवहार होता है, हम लोगों को अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को हमेशा निखारने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग सब एक समाज में रहते हैं जहाँ पे हमारी हर जगह अलग अलग भूमिका है। परिवार में अलग भूमिका है, जहाँ हम कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र

0: में अलग भूमिका है। तो जिस किसी भी भूमिका में हम रहते हैं उस भूमिका को हम अच्छे से पूरी जिम्मेदारी से निभाएं और उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति को हम जी रहे हैं, तो कई बार वो परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, कई बार प्रतिकूल होती हैं। तो मुझे लगता है कि उस परिस्थिति में हम सबसे बेहतरीन जो भी कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें, और इन्हीं प्रयासों से बच्चे भी हमें देख देख करके सीखते हैं और जो भी गलतियां हैं उनसे सीखें और उपलब्धियों पर गर्व करें। यही जीवन है और ऐसे ही सीखते हैं, कुछ दूसरों के अनुभव से, कुछ अपने अनुभव से। और जो हमारी श्रोता बहनें हैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि ठीक है, सीखना जरूरी है और अपने व्यक्तित्व में हर दिन कुछ सकारात्मक जोड़ना ये जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, अपने विचार साझा किए। तो मैनो, आज की जो बातें हमारी मीनू जी से हुई इससे यही स्पष्ट है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, माँ का प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा बच्चों के जीवन की सबसे बड़ी ताकत रहेगा। बदलती परिस्थितियों में एक माँ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इससे जरूरी है कि हम न केवल बच्चों का बल्कि माताओं के भावात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो मीनू जी, आप हमारे घर संसार कार्यक्रम में शामिल हुई, आपने हमारी श्रोता बहनों के साथ इतने अच्छे विचार साझा किए, उम्मीद करते हैं उन्हें जरूर पसंद आएंगे। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपको भी धन्यवाद सुनीता जी, और सभी श्रोता बहनों को भी मेरा धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी वर्तमान समय में माँ की बदलती भूमिका विषय पर श्रीमती मीनू बिष्ट शिक्षिका से की गई ये क्षेत्र संकेत बातचीत। तो बहनों, हम यही कहेंगे कि बदलते दौर में माँ की भूमिका भले ही नए रंगों में नजर आती हो, लेकिन उसके प्यार की गहराई, ममता कभी भी नहीं बदली जा सकती। इसी एहसास को महसूस करते हुए आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाला ये खूबसूरत गीत।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
6: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
5: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
6: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
5: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
6: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: स्वागत है बहनों, एक बार फिर से आप सभी का। आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। बहनों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सभी के जीवन से जुड़ा है, और वो है हमारा दूसरों के साथ तुलना करना। और जब हम किसी दूसरे के साथ अपनी तुलना करते हैं, तो इस समय कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान और अपनी अलग कहानी, अलग परिस्थिति होती है। तो बहनों, आइए आज हम भी तुलना नहीं अपनी पहचान बनाइए विषय पर आपके साथ चर्चा करते हैं। बहनों, क्या कभी आपने भी महसूस किया है कि जाने अनजाने हम अपनी तुलना किसी न किसी से करते रहते हैं? कभी किसी की सुंदरता से, कभी किसी की अच्छी जॉब से या किसी अच्छे काम से, कभी घर परिवार से, तो कभी सोशल मीडिया पर दिखने वाली उनकी खूबसूरत मुस्कुराती तस्वीरों से। लेकिन क्या किसी की भी जिंदगी सचमुच में उतनी परफेक्ट होती है जितनी की हमें दिखाई देती है या जितनी तस्वीरों में हमें दिखाई देती है? शायद नहीं, क्योंकि हर इंसान की कहानी, उसका संघर्ष, उसकी जो परिस्थितियां हैं वो अलग होती हैं, और जो उनकी मंजिल है बहनों, वो भी अलग होती है। इसलिए तुलना कभी भी सब कुछ सही तस्वीर नहीं दिखाती है। बहनों, जब भी हम दूसरों से तुलना करते हैं, तो उनके सिर्फ उपलब्धियां हमें दिखाई देती हैं, उसके पीछे के संघर्ष हमें नहीं दिखाई देते। और यही वजह भी होती है कि हम कई बार अपनी छोटी छोटी खुशियों को कम समझने लगते हैं उनसे तुलना करके। बहनों, तुलना करने से पहले से ये ज़रूर सोचें कि दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबके कार्य, सबकी जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती हैं। अगर आप एक गृहिणी हैं, तो आपका योगदान किसी कामकाजी महिला से कम नहीं है, और अगर आप कामकाजी हैं, तो आपके प्रयास भी पूरे सम्मान के पात्र हैं। बहनों, पहचान इस बात से नहीं बनती कि लोग हमें कितना जानते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि हम अपने जीवन में कितनी ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ जीती हैं।

अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान से कीजिए। व्यस्त दिनचर्या से हर दिन अपने लिए समय जरूर निकालिए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी खूबियों को पहचानिए, साथ ही अपनी कमियों को भी स्वीकार करके अपने सपने पर विश्वास रखें और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें। कोशिश ही क्यों बहनों, बल्कि पूरा करके दिखाएं। क्यों? क्योंकि दुनिया में आपकी तरह कोई दूसरा नहीं है। अपनी मुस्कान, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी मेहनत और अपनी पहचान, यही हमको सबसे अलग और ख़ास बनाती है। आखिर में बहनों, मैं यही कहूँगी कि एक संकल्प करें कि दूसरों जैसे बनने की नहीं बल्कि अपनी पहचान से मैं पहचानने जाऊँगी। क्योंकि जब हम अपनी क्षमताओं यानी अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं तो हर दिन एक नई ऊंचाई हमारा इंतज़ार करती है। अपनी पहचान बनाने का यही हौसला हमें आगे बढ़ाता है। और जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भी कुछ यही बयां कर रहा है। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

सुनो इसी गीत के साथ आज हमारा स्नेह भरा साथ का समय यहीं पर संपन्न होता है। आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। घर संसार कार्यक्रम से विदा लेने का समय है, फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक प्यारी सी मुस्कान पूरे घर को खुशियों से भर देती है। और इस समय अपने रेडियो सखी संगीता दिलारा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार।

0: घर संसार, अभी महिलाएं सुन रही थी अपना ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 1 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों को चंपावत जिले के टनकपुर से हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई और सेवा सुशासन एवं समर्पण के अंतर्गत हल्द्वानी में मैराथन और क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों को चंपावत जिले के टनकपुर से हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। 51 सदस्यीय दल में 21 वर्षीय युवक से लेकर 68 वर्ष के बुजुर्ग तक शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। ये यात्रा मानस खंड से गुजरेगी। यात्रियों को उत्तराखंड की संस्कृति और स्थानीय पहचान को समझने का अवसर मिलेगा।
1: इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री उसकी यात्रा अच्छे से सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए लगातार हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन,

0: पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग, सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य के बीच से होकर ये यात्रा निकलती है और हमारे सीमांत क्षेत्र जो भारत के पहले गांव हैं उन गाँव को भी टच करती है। इससे इस क्षेत्र की आध्यात्मिक जो पर्यटन है वो भी बढ़ेगा आने वाले समय में।
1: बीते शनिवार को यात्री टनकपुर पहुंचे, जहां पारंपरिक कुमाऊनी रीति रिवाज और छोलिया नृत्य से शिव भक्तों का स्वागत किया गया। तीर्थयात्रियों ने यात्रा की सुविधाओं पर संतुष्टि जताई है। प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले बीमार शिक्षकों को दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए निदेशालय स्तर पर विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं, ताकि फर्जी मेडिकल बनाने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त व शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षकों व शिक्षणेतर कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय उच्च स्तरीय बैठक में स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा।
2: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों बड़े पैमाने पर हुई सैंपलिंग में कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लैब टेस्टिंग में फेल पाए जाने पर विभाग ने 19 रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग ने खराब क्वालिटी का सामान बेचने और साफ सफाई न रखने पर 19 व्यापारियों के खिलाफ ADM कोर्ट में वाद दायर किए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी ने बताया कि विभाग की टीम ने जिले भर में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी और निरीक्षण किया था, जिसमें कई खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों को नोटिस दिए गए, जबकि संदिग्ध पदार्थों को नष्ट भी कराया गया।
0: चारधाम यात्रा को दृष्टि रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा सब निर्देश दिए गए थे और बड़े उच्च अधिकारी द्वारा भी कि चारधाम और कांवड़ को दृष्टि रखते हुए हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई गई थी। पूरे संपूर्ण जनपद में लगातार निरीक्षण एवं सैंपलिंग कर रहे हैं और गत माह हमारे जून में जो हमने चारधाम को दृष्टि रखते हुए 19 केस हमने माननीय न्यायालय में दायर किए हैं, ADM न्यायालय में, जिसमें से कि 11 केस तो ऐसे हैं जो अनहाइज कंडीशन में, जिनके द्वारा साफ सफाई का और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निर्देश पालन नहीं किया गया, दायर किए गए। और 8 केस हमारे सैंपल जो हमने पिछले अभी 5-6 महीने पहले जो सैंपल लिखे थे, तो रिपोर्ट आने के बाद और जो नोटिस दिए गए उसका जवाब सही न देने के कारण 8 केस हमने मिठाई, दूध, दुग्ध पदार्थ और स्वीट्स के दायर किए। टोटल 19 केस हमने माननीय न्यायालय में इस महीने दायर किए।
1: राज्य में सेवा सुशासन एवं समर्पण के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 4 से 18 जुलाई सेवा पखवाड़ा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में नैनीताल जिले में 15 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज हल्द्वानी में मैराथन और क्रॉस कंट्री दौड़ जूनियर बालक बालिका और ओपन महिला पुरुष हल्द्वानी स्टेडियम आयोजित की गई। खेल प्रतियोगिता का नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। श्री भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास कर रहा है।
3: लोगों में जो भावना थी वो और प्रज्वलित हुई है कि मेरा कर्तव्य भी देश के प्रति कुछ न कुछ है। यदि देश हमें सब कुछ दे रहा है तो हम देश को क्या दे रहे हैं। आज ये भावना सबके अंदर है। लोग सेवा की भावना से हैं, सुशासन की भावना से हैं और समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिसेज में हो, कोई जहाँ काम कर रहा है वो व्यक्ति आज देश के निर्माण में लगा है। जो प्रधानमंत्री ने एक मंत्र हमको दिया है उनके पीछे चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के, और यहाँ हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के।
1: चंपावत जिले के लोहाघाट में स्थापित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया गया है। प्रथम सत्र के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें 30 छात्राओं का चयन हुआ है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने चयनित छात्राओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह महिला सशक्तिकरण और खेल विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला समर्पित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज है, जहां छात्राओं को विश्व स्तरीय खेल प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों को चंपावत जिले के टनकपुर से हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है और सेवा, सुशासन एवं समर्पण के अंतर्गत हल्द्वानी में मैराथन और क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मदन पाल के कलाम के साथ। फनकार हैं चंदन दास।

चंदन दास से अभी आप सुन रहे थे मदन पाल का ये कलाम। सुगम संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश जिगर मुरादाबादी का कलाम चित्रा सिंह की आवाज़ में।

जगजीत सिंह की गाई ये गजल अभी आप सुन रहे थे, शायर थे बशीर बद्र। इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है रूपक, कहानी ऐसे बनती है।

0: हो सकता है कि ये सवाल बहुत पुराना हो कि आखिर कहानी का जन्म होता कैसे है। कहानी यूं ही तो लिखी जाती नहीं। चलिए सुविधा के लिए मान लेते हैं कि इसके लिए किसी घटना, व्यक्ति या पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है जो अकेले या मिलकर कहानी की नींव तैयार करता है और लिखने वाला शब्दों की लय ताल पर पिरोकर एक कहानी गढ़ देता है। लेकिन सच तो यही है कि किसी कहानी के उद्भव और विकास का इतिहास कहानीकार ही बता सकता है। कहानीकार पूरी दुनिया जहान में अपनी संवेदनाओं के साथ घूमता है, सोच और दर्शन की कई परतों से होकर निकलता है, अपनी रचना धर्मिता, अपनी समझ की पोटलियों को टटोलता है, अपने भावों को खंगालता है, तब जाके बैठता है कहानी लिखने। सिर्फ और सिर्फ कहानीकार ही बता सकता है कि भाई कहानी ऐसे बनती है। कहानी ऐसे बनती है रूपक में आज हम प्रतिष्ठित कहानीकार असगर वजाहत की लिखी कहानी सरगम कोला के साथ आपके समक्ष है। सबसे पहले तो इस कहानी का आनंद लीजिए और उसके बाद असगर वजाहत से एक छोटी सी मुलाकात, ये जानने के लिए कि कहानी आखिर बनती कैसे है। तो लीजिए सुनिए रूपक, कहानी ऐसे बनती है।
1: दिल्ली शहर, देश की राजधानी। दिल्ली में कला और संस्कृति के लिए खास होता है जाड़े का मौसम। इस मौसम में शहर श्वेत वर्णी विदेशी पर्यटकों से भरा रहता है। खलखलाते, उबलते, चहकते, रिझाते, लबालब श्वेत वर्णी विदेशी पर्यटक हमारी संस्कृति के सबसे बड़े खरीदार हैं। ये भाई खरीदार हैं इसलिए मान लेते हैं कि यही असली पारखी। और बड़े घरों की महिलाएं लिपि पुती कैलेंडर

0: आर्ट बनकर जाड़े की शामें किसी आर्ट गैलरी में या नाटक देख के गुजारना पसंद करती हैं। सचमुच जाड़े का मौसम कला और संस्कृति का मौसम है। सूरज जल्दी ही डूब जाता है और नरम मुलायम गर्म कपड़ों से टकराती ताजगी देने वाली हवा आर्ट गैलरियों और ऑडिटोरियमों के आसपास महक जाती है। ऐसी सुगंध की बस पूछिए मत। लोग कला और संस्कृति में डूब जाते हैं, कला और संस्कृति लोगों में डूब जाती है। ऐसी ही एक शाम थी। ऑडिटोरियम में पंडित भीमसेन जोशी का कार्यक्रम था। पंडित भीमसेन जोशी के गायन के परम प्रशंसक दास गुप्ता को गेट के बिल्कुल सामने खड़े होने पर जाने वाले दिखाई दे रहे थे, जो अपने कद को और ऊंचा दिखाने की नाकाम कोशिश में इस तरह लापरवाही से टहलते अंदर जा रहे थे जैसे पूरा आयोजन उन्हीं के लिए किया गया हो। लेकिन दास गुप्ता का बिना टिकट अंदर जाने का कोई जुगाड़ नहीं लग पाया था। बाहर सड़क पर एक घने पेड़ के नीचे अजब सिंह का खोखा था, चाय पान का खोखा। दास गुप्ता गेट के सामने से हटकर अजब सिंह के खोखे के पास जाकर खड़े हो गए। हाँ, सर्दी कुछ बढ़ गई थी और अजब सिंह ने तसले में आग सुलगा रखी थी।
1: कब आई बे पिया सैलानी? कसम मगही पान की दास गुप्ता बाबू, सिर खुजाने से कुछ नहीं होगा। जोशी जी को सुनना है तो खीसे में से पैसे निकालिए, टिकट लीजिए, अंदर जाइए।
2: कितना चाय हो गया मेरा रे?
3: 10 तो हो गया होगा।
1: 10-30 हो गई दास गुप्ता बाबू। अरे 2 तो भीमसेन जोशी जी का बोर्ड देख के ही पी ली थी आपने, गिनवाऊं क्या?
2: 30 है एकदम, 30 हो गया।
1: हाँ 30, वो भी तेज पत्ती की।
3: अजब, तुम चिंता मत करो, हम तुमको ना पैसा दिए बिना मरेगा नहीं। आर पिला दो ना रे बाबा, गर्मा गर्म है।
1: 3 पी के 1 गिनने वाला हिसाब किताब बहुत बढ़ जाता था, पर मुझे मत समझाइएगा। हाँ ये लीजिए दास गुप्ता बाबू, आज जुगाड़ नहीं लगेगा?
3: अजब लगेगा, एकदम लगेगा।
1: मेरी मानिए तो अब घर जाइए, 11 बजने वाले
3: हैं। ऐ क्यों क्यों क्यों घर क्यों जाए हैं? हैं, हमको तो पंडित भीमसेन जोशी को सुनना है। तुम 2 सादा बनारसी लगा दो।
0: अचानक दास गुप्ता के मन में ये ख्याल आया कि सब तो आगे के गेट पर हैं। पुलिस वाला, ऑर्गेनाइजर का बंदा, सब लोग। अगर वो हॉल के पीछे से अंदर घुस जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। ओफो, ये आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। ये सोचता हुआ वो हॉल के पीछे पहुंचता है जहां काफी अंधेरा था।
2: यहाँ तो कोई नहीं है, एकदम वीरान पड़ा है। बेकार में इतना देर में आगे खड़ा था। इस छोटा सा दीवार को फांद कर अंदर घुसना है,
3: फिर तो पांडित जी के सामने बैठकर उनको सुनने का पूरा मजा लेगा।
4: कौन है वे?
2: मैं दास गुप्ता।
4: इधर क्या कर रहे हैं अंधेरे में?
2: निपटने आया हूँ। हे भगवान, इधर भी पारा लगा दिया।
5: ओ साहब, टॉर्च तो बुझी दो। अरे टॉर्च बुझा दो साहब, बोला तो निपटने आया हूँ।
4: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: बिना टिकट अंदर जाने की कोशिश बेकार हुई। अब चूंकि पंडित भीमसेन जोशी की आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए वो लाउड स्पीकर लगाने वालों को भी कोसता है। भीमसेन जोशी की आवाज को सुनकर दास गुप्ता सोचता है कि अंदर वालों के कितने मजे हैं, लेकिन ज्यादातर उनमें ऐसे नमूने भरे पड़े हैं जिन्हें शास्त्रीय गीत संगीत के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
2: पंडित भीमसेन जोशी का गायन

0: ये क्या समझेगा हैं? पंडित जी का दान को एंजॉय करना इनका बस का बात नहीं है। अरे इनसे अगर बोलेगा कि पंडित जी अपना दान में मंदो सप्तक से मध्यम और मध्यम सप्तक से तार सप्तक तक सुर का पुल बना देते हैं, तो ये लोग ना घबरा कर भाग जाएगा हैं? चलाया पंडित जी को सुनने। अरे अभी 10 मिनट में उठकर ना बाहर भागेगा।
1: दादा सर्दी है, उंगलियां ऐठ रही हैं।
0: ऐ सर्दी क्यों नहीं होगा रे, दिसंबर है दिसंबर।
1: अरे टहलने से क्या होगा दादा, थोड़ा सा बैठ लो ना।
0: ऐ अजब ये तबला पर कौन है रे?
1: अरे मुझे क्या मालूम कौन बजा रहा है तबला।
0: वाह वाह बहुत ही सुंदर, इतना गरिमा इतना गंभीर, बाबा अंदर तो आवाज उतर रहा है, अजब एकदम एकदम अंदर तो आवाज उतर रहा है।
2: मुख्य द्वार के पास ही में एक छोटे से पंडाल के नीचे कैंटीन बनाई गई थी। दो मेजों का एक काउंटर सा था, वहां पर एक कॉफी प्लांट लगा था, ऊपर 200 वाट का एक बल्ब चल रहा था। खाने में भी काफी कुछ था, हॉट डॉग हैमबर्गर पॉपकॉर्न। दास गुप्ता ने कान फिर अंदर से आने वाली आवाज की तरफ लगा दिए। तभी वहां कुछ जवान लड़के लड़कियां आ जाते हैं। लड़की ने जींस पहन रखी थी और बाल इतने लंबे थे कि कमर तक लटक रहे थे। एक लड़की के बाल इतने छोटे थे कि कानों तक से दूर थे। लड़के ने चमड़े का कोट पहन रखा था और पैंट इतनी तंग थी कि उसकी पतली पतली टांगे फैली हुई और कुछ अजीब सी लग रही थी। लंबी और पतली टांगों वाले लड़के ने कैंटीन के बैरे से पूछा।
3: Dog. Really, yeah. It was too heavy for me. Can you sing like this?
4: Oh, please. I am so sleepy. And you know, I'm so thirsty right now.
3: Yeah, same here. Hello, listen. Tumhare paas cola hai? Do you have a cola?
5: Sorry, sir. Abhi khatam ho gaya.
4: Oh, my God. How silly. How stupid canteen they have. We must complain.
3: Don't worry, sweeties. Let's have coffee.
6: But I can't have coffee here.
3: Why? Why, my dear?
6: I always have coffee in my house or in Oberoi.
3: Oh, I see. Fine, no problem. Let's go to the Oberoi's then.
5: Sir, cola aa gaya. Chhotu crate lekar aa hi gaya. Wo dekhiye.
4: Oh, cola has come.
3: Are jo suno, o paar karo, cola paar karo.
4: Paar cola.
3: Paar karo. अरे पिला भी दे।
0: कम, कम, कम। भगवान अगर बंदूक होता ना तो अभी का अभी इनको गोली मार देता।
6: बट नाउ आई वांट टू हैव कॉफी इन ओबेरॉय्स।
0: जहर मिले ना पॉइजन तो वो भी पी लेना।
4: बट वी केम हियर टू लिसन टू भीमसेन जोशी ना।
3: ओ डोंट बी सिली प्लीज, ही विल सिंग फॉर द होल नाइट फॉर गॉड सेक। अच्छा एक काम करते हैं, we'll have coffee in the Oberoi and then we can come back, okay? Please, even we can have a sleep and come back. Let's go, please, come.
2: दूर कहीं 12 बजने के घंटे की आवाज सुनाई थी। सड़क पर सन्नाटा था। सड़क के किनारों पर दूर दूर तक मोटरों की लाइन लगी हुई थी। अब लोग बाहर निकलने लगे थे, ज्यादातर अधेड़ उम्र और गंभीर चेहरे वाले, उकताए और आत्मलिप्त।
0: अजब देख रहा है? पंडित जी का प्रोग्राम में जमा ही आ रहा है इनको। नींद से इनका आंख भारी हो रहा है।
1: दादा, अब आप कहेंगे टिकट बर्बाद कर दिया।
0: और क्या, अरे इसको टिकट बर्बाद करना नहीं बोलेंगे तो क्या बोले हैं? अरे पंडित जी तो 2 बजे के बाद मूड में आएंगे।
1: अच्छा।
0: अरे इनका क्या है, सब मालदार लोग है। ड्राइवर भेजकर टिकट मंगवा लिया होगा है? या मुफ्त का पास जुगाड़ कर लिया होगा। अरे

0: घंटा दो घंटा बैठा उठ गया। ये लोग ना यहाँ प्रोग्राम देखने नहीं आता है, जब ये लोग ना आता है सिर्फ पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए।
1: और आप जैसे लोग जिनको सचमुच पंडित जी की कदर है यहाँ बाहर खड़े रहते
0: क्या करेगा है? ऐसा लोग ना टिकट डिजर्व नहीं करता है, पैसा वेस्ट कर दिया, पंडित जी को भी वेस्ट कर दिया, ऐसा राती ऑडियंस है रे
2: दादा। अरे वो देखो वो लोग जा रहे, उनकी जगह खाली होगी होगी
0: है? लेकिन तब भी ना हमको बैठने नहीं देखा। अजब है अजब, तुम बताओ ये पैसा तो इनका पूरा मिल गया है तब भी हमको नहीं बैठाएगा, क्या तमाशा है रे बाबा।
1: सर्दी बढ़ गई है दादा, इधर आ जाओ, आग ताप लो, कोई नहीं समझेगा कि पंडित जी का इतना बड़ा कदरदान बाहर खड़ा है।
2: दादा आर्ट सेंटर का डायरेक्टर बाहर निकल रहा है, अरे उसे लपक लो, क्या पता आपका काम बन जाए। जा जा जा।
0: ए, वो तो फालतू आदमी है रे, दूसरों का पेंटिंग बेच बेच कर दुई दुई कोठी बना लिया, अब सैनिटरी फिटिंग का कारोबार डाल रखा है, यहाँ आर्ट कल्चर का चाप करता है, मालूम है क्यों?
1: क्यों
0: है? क्योंकि इनको पॉपुलेशन का काम सबसे अच्छा आता है, ये लोग ना बड़ा बड़ा पार्टी देता है, एक हाथ से लगाता है दूसरा से काम आता है, अपना वाइफ के नाम पर इंटीरियर डेकोरेशन का ठेका लेता है, वो भी खुद नहीं करता है दूसरा से करवाता है, हजार दो हजार में, और कमाता है लाखों में, घटिया काम से वोट खरीदने तक साफ धंधा जानता है।
2: दादा वो देखो क्या हो रहा है वहाँ।
0: वो तो होगा ही, तू पहचाना नहीं उसको है? कुसुम गुप्ता, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजर है वो।
2: वो उसके कार का दरवाजा खोल रही है जैसे वो मालिक और ये नौकर।
0: खोलेगी क्यों नहीं है? अरे ब्रोशर में दिया होगा 1 लाख का विज्ञापन है, 1 लाख, ऐसा लोगों के लिए आर्ट कल्चर भी धंधा है भाई, धंधा, फैक्ट्री ना डाला बड़ा केंद्र खोल लिया।
1: ओहो दादा यहाँ बैठे बैठे गरियाने से कुछ नहीं होगा।
2: अरे कुसुम गुप्ता को क्यों नहीं पकड़ लेते हो, क्या पता अंदर ही धकेल दे आपको। जाओ दादा
1: कुछ अंग्रेजी में गिटर पिटर करो, क्या पता मान जाए।
2: अरे जाओ ना।
0: ठीक होता है, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम।
3: यस
0: मैडम, माय नेम इज बीरेन, बीरेन दासगुप्त, आई एम अ बिग फैन ऑफ पंडित भीमसेन जोशी।
3: सो
0: मैडम कैन यू प्लीज।
3: नो आई एम सॉरी, वी हैव स्पेंट 20 लाख्स टू अरेंज दिस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री एंट्री देन सॉरी।
0: प्लीज मैडम, अभी तो अंदर बहुत जगह खाली हो गया है।
3: गेट लॉस्ट
0: मैडम, मैडम मैडम प्लीज, आई एम अ बिग फैन ऑफ पंडित भीमसेन जोशी मैम, प्लीज मैडम
3: लीव मी अलोन, लीव मी अलोन।
0: मैडम आप मेरे बात को सुनिए मैडम, मैडम।
2: दादा क्या हुआ?
0: 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, फायदा नुकसान के अलावा इनको कुछ नहीं समझता है। एक बांध लगा दो।
4: 32वां जोड़ा हो जाएगा दादा, ये
0: ठीक है, एकदम ठीक है।
5: My God, what nonsense is happening here?
6: Yeah, no, it was too much.
5: Did you like the program?
6: Oh, he's so handsome.
5: Did you notice the ring he's wearing?
6: Oh, yes. So beautiful. Must be very expensive, huh?
5: Sure. My mother's uncle got the same ring.
6: That is platinum.
5: Yeah. Hey, 2 cup tea.
6: Cup clean hai na?
0: Sunne bhi nahi deta hai. Bakor bakor kiya jata hai.
6: He has just come back from Europe. He has a house in London.
5: Must be very rich.
6: Naturally. He takes 5 lakhs for a night.
5: My God, really? Then I must call him to sing in our marriage.
0: Hey, aukat to dekho. Apna bal par ek taka bhi nahi kama sakta hai. Baap ka daulat ka bal bute par Pandit ji ko shaadi mein gaane ke liye bulayega. अरे मेरे मन में तो आता है ना उठ करके लेक्चर दूं है, और बताऊं कि पंडित जी ना तुम जैसा चीरकुटा का शादी में नहीं गाता है।
7: वही चाय साय होगी के घनी सर्दी पड़ रही।
1: अरे बैठो ड्राइवर साहब, हमारा तो चाय का ही काम है, अभी पिलाते हैं गर्मा गर्म चाय।

0: 150 किलोमीटर गाड़ी चलाते चलाते हवा पतली हो गई। अब साहब को गाना सुनने की सूझरी। 2 बजे को आए, पता नहीं कब तक चलेगा ये प्रोग्राम।
1: सुबह 6 बजे तक चलेगा।
0: अरे भाई तब तो फंस गए।
1: ड्राइवर साहब ये लो चाय। कोई पास वास तो नहीं है आपके पास?
0: पास अंदर जाना है कि?
1: हाँ जी, वो अपने बड़े भाई है, उनको जाना है।
0: अरे पास तो नहीं है भाई, पर जुगाड़ हो सके।
1: अच्छा
0: अभी देखता हूँ, रुक। या गेट पर खड़े हवलदार कब काम आओगे?
2: हाँ जी भाई साहब, हाँ जी एसपी साहब का ड्राइवर हूँ जी। DYSP क्राइम ब्रांच और DSP ट्रैफिक की फैमिली ने पास मंगवाया जी। मैं आप कहो तो बात करा दूँ आपकी। अच्छा जी,
0: लो भाई जोड़ पास
3: मिल गया। अरे ये तो कमाल हो गया, भगवान भगवान।
1: दादा अब लपक लो अंदर।
3: अच्छा ये तो 4 पास है, हम 4 पास का क्या करेगा है?
0: अरे ले लो जी, सभी रख लो, जगह बदल बदल कर बैठ जियो।
3: एक ले लेता है हम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: जाओ दादा जल्दी जाओ, पंडित जी को कम से कम एक कदर दाल सुनने वाला तो मिले।
3: है हो जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
4: ड्राइवर ने बचे हुए 3 पास तसले में जलती हुई आग में डाल दिए और दास गुप्ता गेट की तरफ लग गए। तो दोस्तों, असगर वजाहत की लिखी कहानी सरगम कोला का अंत यहीं पर होता है। आखिर पंडित भीमसेन जोशी का कदरदान उनके पास पहुंच ही गया उनको सुनने के लिए। और अब बारी है इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कि आखिर कहानी बनती कैसी है, और इसके लिए एक छोटी सी मुलाकात कहानीकार असगर वजाहत से।
5: असगर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे श्रोताओं ने अभी अभी आपकी कहानी सरगम कोला का लुत्फ उठाया है। इससे पहले कि मैं कहानी के बारे में आपसे कुछ और चर्चा करूं, हमारे श्रोताओं के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कहानी ऐसे बनती है, ये चूंकि हमारा शीर्षक भी है, तो आप अपने शब्दों में से बताएं।
6: देखिए कहानी ऐसे बनती है जहां घटना विचार संवेदनाएं लोगों को आंदोलित करने के ये सारे के सारे जो उपकरण हैं, ये सारे के सारे टूल हैं, ये जीवन में परिवर्तित होते हैं, ये जीवन में घटित होते हैं और जीवन में घटित होकर ये जीवन की व्याख्या करते हैं, जीवन की परतें खोलते हैं और जीवन को समझने का एक रास्ता दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कहानी जब अपना आकार लेती है तो वो जीवन से आकार लेती है, जीवन की व्याख्या करती है, जीवन को समझने का एक उपकरण बनती है और जीवन को जानने का एक माध्यम होती है। सरगम कोला की कहानी जो है वो दरअसल एक ऐसे समाज की कहानी है जहां पर कला और बाजार का एक ऐसा संगम हो रहा है, जिस संगम के कारण जो कला मर्मज्ञ हैं, जो वास्तव में कलाकार हैं या कला को समझते हैं, तो वे हाशिए पर जा रहे हैं और जो कला को कम समझते हैं या नहीं समझते हैं वो मुख्य पृष्ठ के ऊपर आ रहे हैं।
5: क्या बात है। अच्छा असगर साहब एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जो चरित्र चित्रण होता है या जो पात्र होते हैं कहानी के, वो कहाँ से उपजते हैं और कैसे उसमें आप प्रयोग करते हैं?
6: ये पात्र की कल्पना करें आप तो वो स्वयं बताता है कि इन घटनाओं में वो क्या करेगा, क्योंकि लेखक की पात्र के साथ इतनी आत्मीयता हो जाती है कि एक प्रकार से वो पात्र के साथ रहता है। मैं आपको उदाहरण दूं, महान लेखक जो टॉल्स्टॉय हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक होटल से सीढ़ियां उतर रहे थे, सीढ़ियां इतनी पतली थीं कि एक आदमी उतर सकता था एक चढ़ सकता था, तो जो आदमी चढ़ रहा था उसके चढ़ने के लिए ये रुक गए। तो उस आदमी ने पूछा कि आप उतर भी सकते थे, एक आदमी उतर सकता था, तो इन्होंने कहा कि मैं अकेला कहाँ था, मेरे साथ अन्ना कैरिनिना थी मेरी पात्र।
5: जी जी।
6: तो लेखक इस रूप में अपने पात्रों को जीता है।
5: जी।
6: आमतौर से ये होता है कि जो कहानी का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ पात्र जो है वो

0: सहायक बनते हैं। तो ऐसे पात्रों की कल्पना की जाती है, लेकिन कल्पना में ये ध्यान जरूर रखा जाता है कि ये कोरी कल्पना न हो।
1: चलिए तो बात करते हैं हम लोग सरगम कोला की। सरगम कोला कहाँ से उपजी?
0: इसका जो मुख्य पात्र है तो वो मुझे एक वास्तविक पात्र के रूप में मिला, मंडी हाउस के आसपास घूमता हुआ, दास गुप्ता का। और फिर धीरे धीरे ये पूरा की पूरी कहानी का रूप जो है वो मेरे मन में आने लगा। ये एक छोटी सी वास्तविक घटना पर आधारित है।
1: आपने जो इसमें निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग के चरित्रों को इसमें उठाया है, तो ये तीनों वर्गों को जानबूझ के आपने इसमें रखा कि आपको लगा कि शायद ये तीनों वर्ग तीन वर्गों का रिप्रेजेंट करेंगे या उसका प्रतिनिधित्व करेंगे?
0: देखिए, ये जो हमारा कहानी का जो परिवेश है ये इनके बिना बनता नहीं है। अगर आप इनमें से किसी एक वर्ग को निकाल देंगे तो कहानी का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये एक प्रकार से पूरी सोसाइटी का क्रॉस सेक्शन है, जिस क्रॉस सेक्शन में वो लोग भी हैं कि जिनको साहित्य से, संगीत से, कलाओं से कोई रुचि नहीं है। वो एक अप संस्कृति जो है, अप कल्चर जो है वो उसके लोग हैं, वे हैं जो बहुत जेन्युइन हैं, और वे हैं जो अपना पेट पाल रहे हैं। तीनों जो हैं वो एक प्रकार से मिला करके सिनेरियो को बनाते हैं। ये समझ लीजिए कि ये तीन रंग हैं, जिन तीन रंगों से ये चित्र बन रहा है। अगर हम एक रंग भी कोई निकाल देंगे तो वो चित्र हमारा अधूरा रह जाएगा।
1: चूंकि कहानी में जैसे आपने दिखाया भी है कि जो निम्न वर्ग का इंसान है, जो छोटा सा ढाबा चला रहा है वहां पर, वो फिर भी सरोकार रखता है उस शख्स से जिसको पास नहीं मिला है। ये उसको लगता है कि शायद मेरा दायित्व है कि मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करूं। और दूसरी तरफ वो लोग जो अंदर से बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो सभ्य हैं, जिनके पास पैसा भी है, जो आराम से सुन भी सके, तो ये जानबूझ के आपको लगा कि इस तरह से दिखाना जरूरी है ताकि इसका चित्रण और बढ़िया नजर आए, बहुत अच्छा निकल कर आए।
0: देखिए, कहानी का तो मुख्य जो ढांचा बन रहा है वो बन यही रहा है कि वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे चाहे कला की समझ रखते हों या न रखते हों, वही कला के संरक्षक और वही कला के पारखी माने जा रहे हैं। इसलिए कि उनके पास आयोजन करने का, उनके पास चीजों को मैनेज करने का साधन है, तो जानबूझकर ही रखे गए हैं ये पात्र। और ऐसा है भी कि हमारे देश में आप देखिए कि किस प्रकार से साहित्य और संस्कृति को बदल दिया गया है एक बहुत बड़े व्यवसाय में। ये शो बिजनेस बन गया है, जहाँ पर क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि ये है कि मीडिया के लिए, उसके बाद ये है कि विज्ञापनों के लिए। बिना विज्ञापन के किसी प्रकार की संस्कृति जो है हो ही नहीं सकती है, आज स्थिति है। तो बिना बाजार के संस्कृति नहीं चल सकती। तो ये सरगम और कोला, ये दो शब्द जो है वो संगीत और बाजार के प्रतीक है। तो ये है कि कहानी कहती है कि जब तक इनको आप जोड़ोगे नहीं, तब तक संस्कृति शायद जो है संस्कृति के रूप में नहीं रहेगा, सरगम नहीं होगा बल्कि सरगम कोला होगा, क्योंकि कोला उसमें आकर के एक ऐसा तत्व जुड़ा है जिसको कि मार्केट इकोनॉमी ने जोड़ दिया है कि आप उससे निकल ही नहीं सकते।
1: दो और जो चरित्र हैं बहुत मुख्य चरित्र हैं, एक ड्राइवर और एक वो ऑर्गेनाइजर, ये जब आप उठाते हैं तो कहाँ जोड़ते हैं और किस तरीके से आप इन चरित्रों को जोड़ते हैं आप?
0: देखिए, ये ड्राइवर एक प्रकार से सत्ता का एक अंग है, इसलिए उसके लिए वो सब कुछ बहुत सरल है जो कि दास गुप्ता के लिए बड़ा कठिन है। सत्ता का एक अंश होते हुए भी क्योंकि वो निम्न मध्य वर्ग का है, तो किसी न किसी रूप में वो उसके दर्द को समझता है, दर्द को समझ रहा है। हालांकि उसे संगीत में कोई रुचि नहीं है ड्राइवर को, लेकिन उसको ये जब वो देखता है कि सर्दी में एक आदमी बाहर बैठा है, इतनी देर हो गई है और इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं अंदर जा सकूं, तो उसके मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा होती है। मतलब सहानुभूति आयोजक के मन में नहीं होती है, इस ड्राइवर को एक मानवीय आधार के ऊपर ये लगता है कि हम अगर इसकी सहायता कर सकेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो वो जाता है, वो उसकी सहायता करता है, उसको पास ला कर देता है। और कहानी ये भी स्थापित करती है कि देखिए, जेन्युइन आदमी के लिए जो कुछ पाना इतना मुश्किल है, तो एक आदमी के लिए वो सब पाना कितना आसान है। अगर वो पावर से जुड़ा हुआ है, उसने दो तीन नाम लिए, तो आयोजक जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो गए।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब।
2: अभी आप प्रतिष्ठित कहानीकार असगर वजाहत की लिखी कहानी सरगम कोला पर आधारित नाट्य रूपक सुन रहे थे। वाचन स्वर दलजीत सचदेवा का था और भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग

0: अरोड़ा, संजय वर्मा, सिद्धार्थ, हिम्मत सिंह नेगी, नितिन भसीन, राजकुमार नाहटा, नीलाक्षी, शालू सिंह और मनाल सईद। प्रस्तुति सहयोग किया हरदीप सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता थे विनोद कुमार।
1: ये रूपक आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत हैं उत्तराखंड के लोकगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं पूरन चंद्र पपने के स्वर में।

पूरन चंद्र पपने से ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं गिरीश सिंह बरगली का गाया ये लोकगीत।

0: बंसीलाल की गाय इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई 1 किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
5: The significance is immense.
4: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार।

0: समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से

0: का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
4: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेंद्र का और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान

0: व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। किसान भाइयों, आज की जानकारी का विषय है मडवा मादिरा की संस्तुत प्रजातियां एवं खेती। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर कंचन नैनवाल।
3: मडुआ एवं झंगूरा मोटे अनाज परिवार की प्रमुख फसलें हैं। मोटे अनाज एक विशेष फसल समूह है जिसमें मडुआ, मादिरा, चीना, कौड़ी तथा कुटकी आदि फसलों का समावेश होता है। लेकिन मोटे अनाज आजकल हमारी जीवन शैली से लुप्त हो गए हैं। इन फसलों के लुप्त होने का कारण मुख्य है जैसे मानव जाति में बदलाव, उसकी बदलती भोजन प्रणाली, जीवन शैली, प्राथमिकता, आदतें, स्वाद, पसंद, उदासीनता, घटती उत्पादकता, तकनीकों व जानकारी का अभाव आदि है। मडुआ, जिसको कोदो, रागी, फिंगर मिलेट आदि नामों से भी जाना जाता है, भारत की सबसे प्राचीन खाद्यान्नों में से एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। यह पर्वतीय असिंचित क्षेत्रों में धान के बाद दूसरी मुख्य फसल है। यह एक जल्दी पकने वाली फसल है। मडवा पर्वतीय क्षेत्रों में दाना एवं चारे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाया जाता है। मडवे को यदि पौष्टिकता की दृष्टि से देखें तो मडवा अन्य फसलों जैसे धान, मक्का, गेहूं आदि से ज़्यादा गुणवत्ता युक्त है। इसमें प्रोटीन धान से अधिक तथा कैल्शियम की मात्रा धान से 35 गुना तथा गेहूं से 38 गुना होता है। साथ ही इसमें मिथियोनिन एवं लाइसिन जरूरी अमीनो अम्ल तथा विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन तथा नियासिन आदि भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। 100 ग्राम मडुआ में 7.3 ग्राम प्रोटीन, वसा 101.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 72 ग्राम, खनिज लवण 2.7 ग्राम, कैल्शियम 344 ग्राम, फाइबर अथवा रेशा 3.6 ग्राम एवं ऊर्जा 328 किलो कैलोरी पाई जाती है। मडुआ श्रमिक वर्ग, बढ़ते हुए शिशुओं, गर्भवती तथा मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा भोजन माना जाता है। इसे प्रायः रोटी तथा सत्तू के रूप में खाया जाता है। किसी भी फसल की पैदावार वृद्धि में प्रजातियों का विशेष महत्व होता है। किसानों को क्षेत्र अनुमोदित प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। मडुआ की मध्य अवधि लगभग 105 से 110 दिन में पकने वाली प्रजातियां PRM1, PRM2, VL मडुआ 324, VL मडुआ 149, VL मडुआ 315, PES 176, PES 110 आदि हैं। अल्पकालीन अवधि के लिए पंथ मडुआ 3, VL मडुआ 204, VL मडुआ 146, VL मडुआ 347 एवं VL मडुआ 352 जो कि 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाए।

जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न ऊंचाई के लिए विभिन्न प्रजातियां अनुमोदित हैं। कम व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए वीएल मडुआ 149, वीएल मडुआ 315 एवं वीएल मडुआ 324 मध्य अवधि वाली प्रजाति है, जो कि 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए वीएल मडुआ 204, पंत मडुआ 3 एवं वीएल मडुआ 146 जो अल्पकालीन अवधि अर्थात 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मडुए की बुआई के लिए मई के अंत से जून मध्य तक का समय उपयुक्त होता है। पौधशाला में मई के अंत से जून के प्रथम सप्ताह तक लगाते हैं। प्रति हेक्टेयर पौधशाला में 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मडुआ की रुपाई जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। मडुए की बुआई दो तकनीकों द्वारा की जाती है, पहली सीधी बुआई एवं दूसरी रुपाई द्वारा। सीधी बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा 160 से 200 ग्राम प्रति नाली बीज की आवश्यकता होती है। मडुए की बुआई प्रायः छिटक कर की जाती है, लेकिन यदि बुआई हल्की गहरी कूड़ों में पंक्तियों में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाए तो खड़ी फसल से खरपतवार निकालने में आसानी रहती है। सीधी बुआई के लगभग एक माह बाद पौधों की छटनी कर पौधे से पौधे के बीच की दूरी 7.5 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। मडुआ को रोपाई विधि द्वारा 20 से 25 दिन की पौध होने पर लगा सकते हैं। इसे पंक्तियों में 20 सेंटीमीटर की दूरी अथवा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रखें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी उपज के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 20 किलोग्राम फास्फोरस को एक हेक्टेयर क्षेत्रफल या 800 ग्राम नाइट्रोजन व 400 ग्राम फास्फोरस एक नाली क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होता है। नाइट्रोजन का आधा भाग तथा संपूर्ण फास्फोरस जुताई के साथ डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन का शेष भाग पौध जमाव के लगभग 3 सप्ताह अथवा प्रथम निराई के शीघ्र बाद प्रयोग करना चाहिए। गोबर अथवा कंपोस्ट की खाद लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अथवा 2 क्विंटल प्रति नाली मात्रा का प्रयोग अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए लाभदायक पाया गया है। खरपतवार नियंत्रण के लिए अंकुरण होने के 10 से 20 दिन में पहली निराई तथा 30 से 35 दिन में दूसरी निराई करनी चाहिए। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद 10.5 किलोग्राम आइसोप्रोटिनोन खरपतवार नाशी एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़काव करें। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु बुआई के 3 सप्ताह के अंदर 2,4-D सोडियम साल्ट 80% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 20 ग्राम प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। मडवे में मुख्यतः तना छेदक कीट क्षति पहुँचाता है। इसकी रोकथाम हेतु फिप्रोनील 5 SC की 1 लीटर या कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 50 WP की 600 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC की 2.5 लीटर को 500 से 6 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। मडवा की फसल में झोंका रोग के लक्षण प्रकट होने पर प्रारंभ में बालियों के निकलते समय कार्बेंडाजिम अथवा एडिनोफेनफास 50 EC का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 8 से 10 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 1-2 छिड़काव करें। रोगरोधी प्रजाति VL149 या PRM1 को बोएं। बुआई से पूर्व बीजों को 1 ग्राम कार्बेंडाजिम 50 WP एवं 2 ग्राम थीरम 75 WP को मिलाकर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें तथा खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से 2 छिड़काव, पहला पौधों में 50% बालियां बनने तथा दूसरा 10 दिन के बाद करें। सर्कोस्पोरा पर्णचित्ती के नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। झंगोरा को मादिरा, सावा आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में मडवे के पश्चात झंगोरा का मोटा अनाजों में दूसरा स्थान है।
पर्वतीय क्षेत्र

0: क्षेत्रों की उपजाऊ भूमि में परंपरागत द्विवर्षी फसल चक्र मडुआ, परती, चेतकी, धान अथवा झंगोरा गेहूं के अंतर्गत झंगोरा की खेती की जाती है। यह दाने के साथ साथ चारे के लिए भी एक महत्वपूर्ण फसल है। झंगोरा से उपमा, लड्डू, खीर, रोटी आदि बनाए जाते हैं। झंगोरा भी बहुत पौष्टिक होता है। इसके दानों में लगभग 9.8% रेशा, 5.8% वसा, 6.2% प्रोटीन तथा 4.7% खनिज लवण पाए जाते हैं। इसका सूखा चारा पौष्टिक न होने के कारण प्रायः पशुओं को नहीं खिलाया जाता है, परंतु हरा चारा पौष्टिक माना गया है तथा दुधारू पशुओं को खिलाया जाता है। झंगोरा की VL29 अल्पावधि वाली प्रजाति है, जो कि 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। VL मादिरा 172 एवं VL मादिरा 207 मध्य अवधि वाली प्रजाति है, जो कि 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। विलंब अवधि वाली किस्म PRJ 1 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। झंगोरा सभी प्रकार की भूमि में उगाया जाता है। इसके लिए हल्की दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। क्षेत्र की ऊंचाई के अनुसार इसकी बुवाई मार्च के द्वितीय पक्ष से अप्रैल के प्रथम पक्ष तक की जाती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मार्च द्वितीय पखवाड़ा तथा निचली घाटी क्षेत्रों में अप्रैल का द्वितीय पखवाड़ा उपयुक्त है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र 1500 से 2400 मीटर की ऊंचाई में अप्रैल का प्रथम पखवाड़ा, मध्य पर्वतीय क्षेत्र 1000 से 1500 मीटर में मध्य अप्रैल से मई का प्रथम सप्ताह तक एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र 1000 मीटर तक में मई का अंतिम सप्ताह से जून का प्रथम सप्ताह बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। कुल 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा 160 से 200 ग्राम प्रति नाली बीज की आवश्यकता होती है। झंगोरा की बुआई साधारण दशा में छिटकुआ विधि से की जाती है। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए कूड़ों में बुआई करनी चाहिए। कूड़ की बुरी 30 सेंटीमीटर रखें। झंगोरा की अच्छी पैदावार लेने के लिए 40 किलो नत्रजन तथा 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर अथवा 800 ग्राम नत्रजन व 400 ग्राम फास्फोरस प्रति नाली का प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा जुताई के समय कूड़ों में डाल देना चाहिए। शेष नत्रजन बोने के लगभग एक माह पश्चात प्रथम निराई के शीघ्र बाद टॉप रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। झंगोरा में खरपतवार नियंत्रण मडुआ की भांति करें। झंगोरा में सबसे प्रमुख बीमारी कंडुआ रोग है, जो बालियों एवं दानों में नुकसान पहुंचाता है। कंडुआ रोग की रोकथाम हेतु फफूंदी नाशक रसायन कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति किलो बीज बुआई से बीज उपचार करना चाहिए। यदि झुलसा रोग का प्रकोप होता है तो मैनकोजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें।
1: मडुआ मादिरा की संस्तुत प्रजातियां एवं खेती, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कंचन नैनवाल की वार्ता। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रूपरेखा। हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

श्रोताओ, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर प्रसारित होगा। शाम 5:05 पर आज के कलाकार होंगे उमा आर्या। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा शाम 5:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा सोशल मीडिया एडिक्शन से बचें। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे घटना चक्र और आज का इतिहास। 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कुमावनी एवं गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम।

कार्यक्रम बुराश। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। संध्या 6:41 पर आज सुनिएगा हरिओम शरण और जावेद के गाए भक्ति गीत। प्रादेशिक संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:00। 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि होगा। आज की जानकारी का विषय रहेगा नैनो उर्वरकों की उपयोगिता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रियंका खाती, संचालन निर्मला जोशी का। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस प्रसारित होगा रात्रि 8:00। आज सुनिएगा अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह और चंदन दास के गाए गीत और गजल। हमारी सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे। 7:40 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। आज के फनकार हैं फिल्म अभिनेता जायद खान। आज ही के दिन यानी 5 जुलाई साल 1980 को जन्म हुआ जायद खान का। वो अभिनेता संजय खान के बेटे हैं। साल 2003 में फिल्म चुरा लिया है तुमने से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके बाद उनकी फिल्में आई मैं हूं ना, शब्द, दस, युवराज, ब्लू और अनजाना अनजानी। इनमें से फिल्म मैं हूं ना उनके करियर की सबसे हिट फिल्म रही। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं उनकी इसी फिल्म से।

0: हाय तुमसे मिलके दिल का है जो
1: शुरू मैं हूं ना फिल्म के बाद साल 2005 में जायद खान ने 4 फिल्में की, वादा, शब्द, 10 और शादी नंबर 1। साल 2006 में सोहेल खान की एक्शन मल्टीस्टारर फिल्म फाइट क्लब मेंबर्स ओनली में वो नजर आए। इसके बाद युवराज और फिर ब्लू फिल्म में जायद खान सहायक भूमिका में दिखाई दिए। आइए अगला गीत सुनते हैं जो उन पर फिल्माया गया है, फिल्म युवराज से।

श्रुतु, साल 2010 में रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत फिल्म अनजाना अनजानी में एक बेवफा मंगेतर की सहायक भूमिका में जायद खान नजर आए। इसके बाद साल 2011 में उन्होंने अभिनेत्री दिया मिर्जा के साथ मिलकर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। निर्माता के तौर पर उनकी पहली फिल्म प्रदर्शित हुई लव ब्रेकअप जिंदगी। इसके साथ ही साथ छोटे पर्दे पर भी उन्होंने अभिनय किया है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं उनकी अभिनीत फिल्म ब्लू का ये गीत।

ब्लू फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार अब संपन्न हुआ। आज के फनकार थे अभिनेता जायद खान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं, प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्मिला जोशी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत आपको सुनवा रही हूं अधिकार फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की सुरीली आवाजें हैं, रमेश पंत के लिखे हुए बोल और आर डी बर्मन का संगीत। दोस्तों, कोई माने या ना माने, ये दिल की अदालत के फैसले कुछ अलग ही होते हैं। यहाँ इश्क के सिवा कोई और कसम नहीं चलती, इबादत होती है इश्क की और इश्क ही गूंजता है। कोई माने या ना माने, दिलों में बसी ये मोहब्बत कम नहीं होती। आइए सुनते हैं वो गीत जिसके बिना दिल की अदालत के फैसले मुकम्मल नहीं।

श्रोताओं, अगला गीत हम लेकर आए हैं वारिस फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए ये बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का। दोस्तों, ये गीत दिन की भरी धूप में भी एक ठंडी सी लहर का एहसास देता है और यकीन होता है कि मोहब्बत के गीत सदियों तक लहराते हैं हर दिल में। हवा ने छेड़ा जो प्यार का तराना, हवा ने छेड़ा जो प्यार का तराना, दिल ने भी मुस्कुरा कर माना उसे अपना फसाना।

दोस्तों, किसी की एक झलक दिल की धड़कन बढ़ा दे, ऐसी बात हिंदी फिल्मी गीतों में बार बार सुनने को मिलती है। पहली नजर की बात जब भी होती है तो फिल्म संगीत के ये सुरीले नगमे फिजा में गूंजने लगते हैं। अगला गीत कुछ ऐसा ही हम आपको सुनवा रहे हैं, अंबर फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज है, महेंद्र दहलवी के लिखे बोल और सपन जगमोहन का संगीत। बस एक नजर ने ऐसा असर कर दिया, बस एक नजर ने ऐसा असर कर दिया, दिल था जो मेरा वो उसके इश्क के सफर पर चल दिया।

दोस्तों, मोहब्बत जब अपने मुकाम पर पहुंचती है तो दिल कह उठता है, अब दो दिलों की मुश्किल आसान हो गई। ये गीत है पूजा के फूल फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है मदन मोहन का। दोस्तों, ये गीत सिर्फ दो दिलों के मिलन का जश्न नहीं बल्कि प्यार की जीत का ऐलान है। दो दिल मिले तो राह भी आसान हो गई, दो दिल मिले तो राह भी आसान हो गई, मोहब्बत की हर दास्तां पहचान हो गई।

दोस्तों, शरारत अगर धुन बन जाए और मुस्कुराहट गीत, तो बन जाता है लाट साहब फिल्म का कुछ ऐसा खूबसूरत नगमा जो अब हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत में शम्मी कपूर की मस्ती है, मोहम्मद रफ़ी की सुरीली शरारत भरी आवाज़, हसरत जयपुरी के प्रेम में डूबे बोल और शंकर जयकिशन का चुलबुला संगीत। निगाहों ने जो दिल का कारवां लूट लिया, निगाहों ने जो दिल का कारवां लूट लिया, मुस्कुरा कर किसी ने सारा जहां लूट लिया।

दोस्तों, मोहब्बत में हर आशिक अपनी महबूबा से यही कहता है कि चाहने वाले तुम्हारे कई होंगे लेकिन हम जैसा कोई नहीं। इसी बात को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में गुनगुनाता हुआ ये गीत है जो हमने लिया है शरीफ बदमाश फिल्म से। आर डी बर्मन की मस्ती भरी धुन और किशोर कुमार की बेफिक्र अदायगी से भरी आवाज़ इस गीत को एक अलग ही रंग दे देते हैं। आनंद बख्शी के ये कमाल के बोल जो हर आशिक के दिल की जुबान लगते हैं। हजारों चेहरे मिलेंगे राहों में मुस्कुराते हुए, हजारों चेहरे मिलेंगे तुम्हें राहों में मुस्कुराते हुए, मगर सच्चा हमसफर वही जो हर मोड़ पे साथ निभाए।

शुतोष शरीफ बदमाश फिल्म के इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी उर्मिला जोशी को दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराहन के 3:30 हुए हैं। अब हमारी प्रथम प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होते हैं। सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा।

0: वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उमा आर्या का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, उमारिया के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे रविवासरी संगीत सभा। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर में प्रसारित होगा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात होगी सोशल मीडिया एडिक्शन से बचें विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे घटनाक्रम और इतिहास के पन्नों से जानेंगे आज का इतिहास। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनते हैं शाम 5:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि प्रसारित होगा शाम 7:15 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे नैनो उर्वरकों की उपयोगिता विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर प्रियंका खाती और संचालन करेंगी निर्मला जोशी। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आते हैं संध्या 6:41 पर। प्रादेशिक संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7 बजे। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सबरस पर। और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:40 और रात्रि 9:15 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम इंद्रधनुष के तहत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब प्रस्तुत है कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 7:20 और सुबह 10:30 पर प्रादेशिक समाचार, दोपहर 1:05 पर पुनः उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। विचार बिंदु कार्यक्रम में आप सुनेंगे आचार्य विनोबा भावे के विचार प्रातः 6:05 पर। आज की बात का समय रहता है प्रातः 6:40। देशगान आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर और कार्यक्रम विविधा हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 6:50 पर। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ का 146वां भाग। महिलाओं के कार्यक्रम घर संसार का समय रहेगा दोपहर 12:30। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी समाज में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी विषय पर। दोपहर 1:30 पर प्रसारित होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1321वीं कड़ी। किसान भाई खेती की बातें कार्यक्रम सुनते हैं दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पर्वतीय क्षेत्र हेतु मक्का की उन्नत प्रजातियां एवं वैज्ञानिक खेती विषय पर पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजेश कुमार खुलबे। युववाणी कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूकता। साथ ही आप सुनेंगे साहित्य जगत और इतिहास के पन्नों से जानेंगे आज का इतिहास। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा होंगी बाबू जगजीवन राम पुण्यतिथि, वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण संरक्षण कतुक सार्थक और युवा आत्मनिर्भर कैसे बने विषयों पर। ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी प्राकृतिक खेती के लाभ विषय पर। साथ ही चर्चा की जाएगी फसलों का बीमा कर निश्चित रहें विषय पर। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी में, दोपहर 2 बजे कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत में। भक्ति संगीत आप सुनेंगे संध्या 6:41 पर। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:30

मिनट और सुबह 11:30। सुगम संगीत आप सुनते हैं 10:05 कार्यक्रम सबरंग में, दोपहर 1:15, रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सबरस में और रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:05 पर कार्यक्रम गीत निझर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार में, 11 बजे सैनिकों के लिए में, दोपहर 12 बजे मेरी पसंद में, अपराह्न 2:45 पर एक ही फनकार में, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीतों में, शाम 7:40 और रात्रि 9:15 पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। अभी युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी प्रिय श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र पवन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दैनिक कार्यक्रम में, जहां हम हर दिन लेकर आते हैं जानकारी, बातचीत और मनोरंजन। तो दोस्तों, आज का अंक लेकर हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आज की बात में बातचीत करेंगे सोशल मीडिया एडिक्शन से बचें विषय पर। उसके बाद अंक विशेष के अंतर्गत घटनाक्रम और अंत में हम आपको बताएंगे आज का इतिहास। और दोस्तों, बातचीत के इस सिलसिले के साथ साथ आपके भरपूर मनोरंजन के लिए हम आपको सुनवाएंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज की बात के साथ। दोस्तों, अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो हम सभी जानते हैं कि इसके माध्यम से हम नई बातें सीखते हैं, दुनिया से जुड़े रहते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, और कई लोगों ने तो इसी के ज़रिए अपना करियर भी बनाया है। लेकिन जब सोशल मीडिया हमारी ज़रूरत से बढ़कर हमारी आदत बन जाए और आदत से बढ़कर हमारी मजबूरी बन जाए, तब हमें रुककर सोचना चाहिए। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया और अचानक देखा कि 1 घंटा निकल चुका है? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, ऐसा लगभग हर युवा कभी ना कभी महसूस करता है। दोस्तों, असल में सोशल मीडिया इस तरह बनाया गया है कि हम बार बार उसे खोलें। एक रील खत्म होती है, दूसरी अपने आप चल जाती है, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया। इसका असर केवल हमारे समय पर नहीं पड़ता, बल्कि धीरे धीरे हमारी पढ़ाई प्रभावित होती है, काम पर ध्यान कम होने लगता है, नींद पूरी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना करने लगते हैं। कभी किसी की विदेश यात्रा, कभी किसी की नई गाड़ी, कभी किसी की सफलता, और फिर हम सोचने लगते हैं सबकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, बस मेरी ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाते, सिर्फ उसके सबसे अच्छे पल दिखाते हैं। जिस तरह किसी किताब का केवल एक सुंदर पन्ना देखकर पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती, उसी तरह किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर उसकी पूरी ज़िंदगी का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, अब सवाल है कि इस आदत से बचें कैसे। सबसे पहला कदम है, अपने स्क्रीन टाइम पर नज़र रखिए। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम रोज़ 3, 4 या फिर 5 घंटे सोशल मीडिया पर बिता देते हैं। दूसरा,

हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं होता, इसलिए अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। यकीन मानिए, आपका मोबाइल कम बजेगा और आपका मन भी ज़्यादा शांत रहेगा। तीसरा, दिन का एक समय ऐसा तय कीजिए जब मोबाइल बिल्कुल दूर रहे, जैसे कि खाना खाते समय, पढ़ाई करते समय या सोने से कम आधा घंटा पहले। और सबसे ज़रूरी बात, ऑफलाइन ज़िंदगी को भी उतना ही समय दीजिए। परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों से आमने सामने मिलिए, कोई खेल खेलिए, किताब पढ़िए, नई कला सीखिए। यकीन मानिए, असली मुस्कान मोबाइल की स्क्रीन से नहीं, अपने लोगों के साथ बिताए गए समय से मिलती है। दोस्तों, तकनीक हमारी सेवक होनी चाहिए, मालिक नहीं। मोबाइल हमारे हाथ में अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारा समय, हमारा ध्यान और हमारी खुशियां मोबाइल के हाथ में चली जाएं, तो फिर सोचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया मत बनने दीजिए। रील्स देखिए, लेकिन अपने असली सपनों को मत भूलिए। लाइक्स ज़रूर कमाइए, लेकिन लोगों का प्यार और सम्मान उससे कहीं ज़्यादा कमाइए। तो दोस्तों, आज की बात में फ़िलहाल इतना ही, और कार्यक्रम में अब समय है आपके मनोरंजन का। तो लीजिए, पेश है ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए।

श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। कार्यक्रम में अंक विशेष के अंतर्गत अब बारी है घटनाक्रम की, जिसमें आप जानेंगे बीते सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथियों, भारत और जापान ने 2 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अपने पहले संयुक्त रक्षा सह विकास यानी जॉइंट डिफेंस को डेवलपमेंट परियोजना की घोषणा की। यह परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न से संबंधित है, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। हाल ही में आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर प्रेरणा विथिका नामक विशेष फोटो गैलरी का शुभारंभ किया है। इस गैलरी का उद्घाटन पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी रंग भवन ऑडिटोरियम में किया। दोस्तों, स्वर प्रेरणा विथिका भारत के महान संगीतकारों को समर्पित एक विशेष फोटो गैलरी है। इसमें 20 प्रतिष्ठित संगीत विभूतियों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान तथा पंडित भीमसेन जोशी जैसी महान हस्तियां शामिल हैं। साथियों, हाल ही में भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को 2026 USISPF नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान भारत के दूरसंचार क्षेत्र के विकास तथा भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। अगली खबर की बात करें तो हाल ही में भारत सरकार ने PME विद्या पहल के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल को आधिकारिक रूप से देश का वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म घोषित किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए निरंतर स्थानीय भाषाओं पर आधारित तथा समावेशी डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करना है। दोस्तों, दीक्षा एक ओपन सोर्स डिजिटल शिक्षण मंच है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोरे बीच के निकट भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। यह हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, बात करें अपतटीय हवाई अड्डे की, तो ये ऐसा हवाई अड्डा होता है जिसे समुद्र में पुनः प्राप्त भूमि अथवा समुद्री संरचनाओं पर बनाया जाता है। जिन शहरों में भूमि की उपलब्धता सीमित होती है, वहां बड़े विमानन केंद्र विकसित करने के लिए इस मॉडल को अपनाया जाता है। जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया ऐसे हवाई अड्डों वाले प्रमुख देश हैं। तो दोस्तों, घटनाक्रम में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये मस्ती भरा गीत, और गीत के उस पार आज का इतिहास।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में, या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी अपने रेडियो मित्र पवन के साथ। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं 5 जुलाई का इतिहास। दोस्तों, 5 जुलाई सन 1947 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में शाही स्वीकृति मिली। वर्ष 1954 में इसी दिन BBC ने पहला टेलीविज़न प्रसारण किया। इसकी अवधि 20 मिनट थी और इसे पहले से बनाकर तैयार किया गया था। साल 1954 में ही 5 जुलाई के दिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई। वर्ष 1981 में 5 जुलाई के दिन राजन महादेवन ने गणित के पाई के 31,811 अंकों की गणना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और 5 जुलाई सन 1998 में आज ही के दिन तमिलनाडु में डॉल्फिन सिटी का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, इसी के साथ अतीत में आज के दिन कुछ महान हस्तियों का निधन भी हुआ था, आइए जानते हैं। 5 जुलाई सन 1877 में अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवयित्री तोरु दत्त का निधन हुआ था। और साल 1957 में 5 जुलाई को ही भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ तथा आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा का निधन हुआ था। अब एक नज़र आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों पर जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर प्रसिद्धि हासिल की। 5 जुलाई सन 1995 में PV सिंधु का जन्म हुआ था, जो भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साल 1947 में 5 जुलाई के दिन भारत के नामी जीव विज्ञानी लालजी सिंह का जन्म हुआ था। और दोस्तों, 5 जुलाई सन 1920 में इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय तैराक सचिन नाग का जन्म हुआ था। तो साथियों, ये थी देश और दुनिया के इतिहास से जुड़ी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। कार्यक्रम में आगे बारी होगी आज के प्रश्न की, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम में अब समय हो चला है आज के प्रश्न का। जी हाँ श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं कार्यक्रम से जुड़ा आज का प्रश्न। लेकिन उससे पहले बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर हम आपको बता रहे हैं। बीते दिन यानी 3 जुलाई को हमने प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 जुलाई। और दोस्तों, इसी के साथ अब प्रस्तुत है हमारा आज का प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु का संबंध किस खेल से है। प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु का संबंध किस खेल से है। इस प्रश्न का सही उत्तर हम अपने कल के संस्करण में बताएंगे। तब तक आप भी इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर सोचिए और भेज दीजिए हमारे कार्यक्रम के व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। अभी अपने दोस्त पवन को दीजिए अनुमति। कल फिर आपसे होगी मुलाकात युववाणी कार्यक्रम के एक और नए अंक के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण।

श्रोताओं, उत्तरायण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गोकुल सिंह बिष्ट के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उत्तरायण। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शंकर उप्रेती और माहेश्वरी बिष्ट का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: ಸಂಗ ಕೂಲಿ ಸುಂಕ
1: ನಾನ್ ನನ್ನ

0: अरे दिखे हो थोड़ी सा ज्यादा
1: नहीं पास
2: अरे गागरी को ठंडो पानी दी जाग कूली
1: नन्ना।

दापिले की धारा गड़बड़ी गरा हूँ खुला दिन को सौ मेर मनु लोचन सारा ये तू भगी अमर मेर मनु गोपी तन सा।

रोहट की ताना कुल बुजो बाना कुल काम बजनो खजो मेर मनो जो निरनी जाना कुल काम बजन है जो निरनी जाना ये तू कलयुग की बान मेरी।

प्यार गरीब है जी म्यार मानो प्यार में बुआ शेटा ये मेरा मानो कलयुग की बाना छे तो।

श्रोताओं, भुवन चंद्र आर्या के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का उत्तरायण कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

श्रोताओं, भुवनचंद्र आर्या के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का उत्तरायण कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जब वक्त की कीमत सबसे ज्यादा हो तो भरोसा कीजिए भारत के अपने स्पीड पोस्ट पर। जरूरी कागजात, बिजनेस शिपमेंट या 35 किलो तक के पार्सल की हर पार तेज, सुरक्षित और समय पर डिलीवरी। BNPL क्रेडिट, बड़े पार्सल पर वॉल्यूम छूट और मुफ्त पिकअप। आपका काम होगा अब और भी आसान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डाकघर या आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाएं।
2: चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड डाक परिमंडल द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में 29 करोड़ 65 लाख की लागत से निर्मित धनगढ़ी पुल को जनता को समर्पित किया। चंपावत जिले में मुख्यमंत्री ने बूमघाट में जिले की 2 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हरिद्वार में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और प्रदेश भर में सेवा, सुशासन एवं समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के रामनगर में 29 करोड़ 65 लाख की लागत से निर्मित 220.90 मीटर लंबे धनगढ़ी पुल को जनता को समर्पित किया है। ये पुल राष्ट्रीय

0: राजमार्ग संख्या 121 काशीपुर रामनगर मारचुला बुआखाल मार्ग कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने का प्रमुख प्रवेश मार्ग होने के साथ साथ नैनीताल अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ चंपावत तथा पौड़ी गढ़वाल के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पुल के शुरू होने से पूरे प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा,
1: पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए। और मैं कहूँ तो इस पुल को कह सकते हो कि पूरे उत्तराखंड की कनेक्टिविटी के लिए ये पुल आज जो चालू हो रहा है, धनगढ़ी का पुल और इसके बगल में ही पनौत का पुल, दोनों ही पुल जो है 29 करोड़ की धनराशि से अधिक के पुल बने हैं। और इस पुल के बन जाने से जो वर्षा काल में इधर पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत प्रभावित हो, अनेकों लोगों को इसमें बड़ी जनहानि भी हो, और आज ये पुल चालू हो जाने की लहर है लोग।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बूम घाट में जिले की 2 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 60.21 करोड़ की लागत से बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा तटबंध निर्माण कार्य और 5.74 करोड़ की लागत से पूर्णागिरी तहसील के ग्राम छीनीगोट की सुरक्षा हेतु हड्डी नदी पर बाढ़ सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पूर्व मुख्यमंत्री ने शारदा नदी पर संचालित बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा तटबंध केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और क्षेत्र के समग्र विकास की मजबूत आधारशिला है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर से हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। 51 सदस्यीय दल में 21 वर्षीय युवक से लेकर 68 वर्ष के बुजुर्ग तक शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का पूरा प्रयास कर रही है।
1: हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री उसकी यात्रा अच्छे से सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए लगातार हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर करते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन हो जाएंगे। स्थानीय उत्पादों को, हमारे यहाँ के संस्कृति को, इन सभी यात्रियों को सुनने का अवसर मिलेगा।
0: इससे पहले शनिवार को यात्री टनकपुर पहुंचे, जहां पारंपरिक कुमाऊनी रीति रिवाज और छोलिया नृत्य से शिव भक्तों का स्वागत किया गया। तीर्थयात्रियों ने यात्रा की सुविधाओं पर संतुष्टि जताई है।
2: हमारी सेवाएं हो रही है, जितना आप लोग ध्यान रख रहे हैं ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। खास करके कुमाऊं मंडल और वो लोगों ने जो हमारी सेवा की है उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम रास्ते में आए वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा गया, हमें लंच सब अच्छे से दिया गया। और मैं यही कहूँगा कि और लोग भी इसके लिए अप्लाई करें, यंग लोग भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड लोग ही आ सकते, ज़रूर से अप्लाई करें वहाँ।
0: आपको बता दें कि चंपावत जिले के मार्ग से दूसरी बार यात्रा संचालित की जा रही है। हरिद्वार में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सहकार से समृद्धि उत्तराखंड की प्रगति थीम के तहत सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज से 5 वर्ष पूर्व भारत में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। श्री अमित शाह पहले सहकारिता मंत्री बने। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 29 जून से 6 जुलाई तक विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं। इसमें वृक्षारोपण, किसान गोष्ठी और सहकारिता सम्मेलन शामिल हैं। इस दौरान पूरे देश में 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
3: जी के द्वारा आज से 5 वर्ष पूर्व भारत में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। और 5 वर्ष पूरे होने पे पूरे देश में 29 तारीख से देखिए और 6 जुलाई तक जो है पूरे देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं। उसमें वृक्षारोपण है, उसमें किसान गोष्ठियाँ हैं, उसमें सहकारिता बंधुओं के सम्मेलन हैं और हमारे जितने भी देश में 1 करोड़ वृक्षारोपण लगाने का हमारे सरकार ने थे। हमारे राज्य में भी हम लोग हर जिले में और हर समिति में बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं।

0: सहकारिता समिति बहादुराबाद के चेयरमैन अनिल चौहान ने कहा कि इस मौके पर वृक्षारोपण किया जा रहा है जिससे किसी को परेशानी न हो।
1: सरकार को आज पूरे 5 साल हो चुके हैं, सहकारिता को 5 साल हो चुके, हमारे मुख्यमंत्री जी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलब्ध में हमारे यहाँ ये कार्य रखा गया, पेड़ लगाओ देश बचाओ, पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए पर्यावरण को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना चाहते हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां ना हो।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश भर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित सेवा सुशासन एवं समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पौड़ी जिले के विकासखंड एकेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र को विकास योजनाओं की सौगात दी, विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया तथा स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा अभियान संचालित किया जा रहा है। उत्तरकाशी के हर्षिल में चल रहे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने रविवार को स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने कार्य की प्रगति को देखा और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मॉनसून और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए। एडीएम ने कहा कि नदी के तेज बहाव के कारण जो भूमि कटाव हो रहा है उसे रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य बेहद जरूरी हैं। रानीखेत के विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल ने करीब 9 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नए बस टर्मिनल का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को तय समय पर कार्य पूरा करने के साथ ही गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि बस टर्मिनल बनने से रानीखेत में अन्य महानगरों की तर्ज पर बसों को खड़ा करने की सुविधा के साथ यात्रियों को भी आवागमन की में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में 29 करोड़ 65 लाख की लागत से निर्मित धनगढ़ी पुल को जनता को समर्पित किया। चंपावत जिले में मुख्यमंत्री ने बूमघाट में जिले की 2 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हरिद्वार में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और प्रदेश भर में सेवा सुशासन एवं समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत की इस पावन बेला का शुभारंभ कर रहे हैं हरिओम शरण के स्वर में इस मधुर भजन के साथ।

श्रोताओं, जावेद के स्वर में इसी भक्ति वंदन के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 6:50 होने को हैं। अब गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी दीपक नेगी। पहली मुख्य समाचार, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आया तीर्थ यात्रियों ते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन टनकपुर बटिन हरी झंडी दिखे की अगला पड़ाव ते रवाना करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन रामनगर मां 29,65,00,000 की लागत से निर्मित धनगढ़ी पुल ते जनता को समर्पित करी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन बोली कि शिक्षकों का वार्षिक हस्तांतरण प्रक्रिया ते निष्पक्ष व पारदर्शी बनौने ते कई अहम निर्णय लिए गए। हर हरिद्वार मां सहकारिता मंत्रालय को स्थापना का 5 वर्ष पूर्ण होने का उपलक्ष्य मां सहकार से समृद्ध उत्तराखंड की प्रगति थीम का तहत सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम को आयोजन करेंगे। अब समाचार विस्तार से, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आया तीर्थ यात्रियों ते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन चंपावत जिला का टनकपुर भटिन हरी झंडी दिखे की अगला पड़ाव ते रवाना करी। 51 सदस्य दलमा 21 वर्षीय युवकों से लेकर 68 वर्ष का बुजुर्गों तक शामिल छन। ये मौका पर मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य सरकार यात्रा ते सुरक्षित और सुविधाजनक बनौने का पूरा प्रयास करनीच।
1: प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्री उसकी यात्रा अच्छे से सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो। उसके लिए लगातार हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर करते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन हो जाएंगे। स्थानीय उत्पादों को, हमारे यहाँ के संस्कृति को, इन सभी यात्रियों को सुनने का अवसर मिलेगा।
0: ये से पहले शनिवार को यात्री टनकपुर पहुंचने जग पारंपरिक कुमाऊनी रीति रिवाज और छोलिया नृत्य करी शिव भक्तों को स्वागत करेंगे। तीर्थयात्रियों ने यात्रा की सुविधाओं पर संतुष्टि जताई।
2: सेवाएं हो रही है, जितना आप लोग ध्यान रख रहे हैं ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। खास करके कुमाऊं मंडल और वो लोगों ने जो हमारी सेवा की है उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम रास्ते में आए वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा गया, हमें लंच सब अच्छे से दिया गया। और मैं यही कहूँगा कि और लोग भी इसके लिए अप्लाई करें, यंग लोग भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड लोग ही आ सकते हैं, ज़रूर से अप्लाई करें वहाँ।
0: चंपावत जिला का मार्ग बटे दूसरी बार यात्रा संचालित करे जानी च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन नैनीताल जिला का रामनगर मां 29,65,00,000 की लागत से निर्मित 220.90 मीटर लंबू धनगढ़ी पुल ते जनता को समर्पित करी। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 काशीपुर रामनगर मारचूला बुआखाल मार्ग कुमाऊं और गढ़वाल ते जोड़ने वालों महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग च, जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचना को प्रमुख प्रवेश मार्ग होना का दगड़ा दगड़ी नैनीताल अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ चंपावत और पौड़ी गढ़वाल का लोगों ते सबसे बड़ी सौगात च। ये मौका पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि ये पुल का शुरू होने से पूरा प्रदेश का लोगों ते लाभ मिललो,
1: पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए। और मैं कहूँ तो इस पुल को कह सकते हो कि पूरे उत्तराखंड की कनेक्टिविटी के लिए ये पुल आज जो चालू हो रहा है, धनगढ़ी का पुल और इसके बगल में ही पनौत का पुल, दोनों ही पुल जो है 29 करोड़ की धनराशि से अधिक के पुल बने हैं। और इस पुल के बन जाने से जो वर्षा काल में इधर पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत प्रभावित हो, अनेकों लोगों को इसमें बड़ी जनहानि भी हुई और आज ये पुल चालू हो जाने की लहर है लोग।
0: रानीखेत का विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल करीब 9,03,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले नए बस टर्मिनल को भूमि पूजन करी निर्माण कार्य को शुभारंभ करी। उन कार्यदायी संस्था ते तय सीमा पर कार्य पूर्ण करना का साथ ही गुणवत्ता पूर्वक कार्य करना का निर्देश दिनी। विधायकन बोली कि बस टर्मिनल बनने से रानीखेत में अन्य महानगरों को तर्ज पर बसों को खड़ा करने की सुविधा का दगड़ा यात्रियों ते भी आवागमन में आधुनिक सुविधाएं मिलला।
3: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: प्रदेश में विद्यालय शिक्षा विभाग का अंतर्गत मेडिकल प्रमाण पत्रों का आधार पर हस्तांतरण जान वाला बीमार शिक्षकों को दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण बटे गुजरन पड़ लो। यहाँ का निदेशालय स्तर पर विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों ते दिए गए ताकि फर्जी मेडिकल बनौने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसे जा सको। यहाँ का अलावा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्देश भी अधिकारियों ते दे दिए गए। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन बताई कि राज्य सरकार शिक्षकों का वार्षिक स्थानांतरण ते पूरी तरह तैयार च या का वास्ता विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी करे जाना चन। उन बोली कि विभागीय उच्च शिक्षा स्तरीय बैठक में स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने ते कई अहम निर्णय लिए गए। हरिद्वार में सहकारिता मंत्रालय को स्थापना का 5 वर्ष पूरा होने का उपलक्ष्य में सहकार से समृद्ध उत्तराखंड को प्रगति थीम का तहत सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम को आयोजन करेंगे।

0: कार्यक्रम में प्रदेश का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धनसिंह रावत मुख्य अतिथि का रूप में शामिल हुएन। डॉक्टर धनसिंह रावत ने बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्वार आज बटीन 5 वर्ष पूर्व भारत में एक नयु सहकारिता मंत्रालय बनेगे। देश को पहलू सहकारिता मंत्री अमित शाह ते बनेगे। पूरा देश में 29 जून बटीन 6 जुलाई तक विभिन्न प्रकार का आयोजन करेगेन। यहाँ वृक्षारोपण, किसान गोष्ठी और सहकारिता सम्मेलन शामिल च। ये दौरान पूरा देश में 1 करोड़ वृक्षारोपण लगाना को लक्ष्य रखेगे।
1: के द्वारा आज से 5 वर्ष पूर्व भारत में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। और 5 वर्ष पूरे होने पे पूरे देश में 29 तारीख से लेके और 6 जुलाई तक जो है पूरे देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं। उसमें वृक्षारोपण है, उसमें किसान गोष्ठियां हैं, उसमें सहकारिता बंधुओं के सम्मेलन है और हमारे जितने भी देश में 1 करोड़ वृक्षारोपण लगाने का हमारे सरकार ने थे। हमारे राज्य में भी हम लोग हर जिले में और हर समिति में बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं।
0: सहकारिता समिति बहदराबाद का चेयरमैन अनिल चौहान बोली कि ये मौके पर वृक्षारोपण करे जाना चाहिए जैसे कई को परेशानी न हो।
2: आज पूरे 5 साल हो चुके हैं सहकारिता को, 5 साल हो चुके हमारे मुख्यमंत्री जी को, 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ ये कार्य रखा गया, पेड़ लगाओ देश बचाओ, पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए पर्यावरण को बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना चाहते हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां ना हो।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन चंपावत का भूम घाट में जिला का द्वी बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास करी। मुख्यमंत्री ने 60.21 करोड़ की लागत से भूम बटीन टनकपुर तक शारदा नदी का तट पर बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य और 5.74 करोड़ की लागतन पुरानागिरी तहसील को ग्राम छिनीगोट को सुरक्षा हेतु हुड्डी नदी पर बाढ़ सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य को शिलान्यास करी। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहली मुख्यमंत्री ने शारदा नदी पर संचालित बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य को स्थलीय निरीक्षण करी, कार्यों की प्रगति को जायजा लेनी और संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता का दगड़ी पूरा करने का निर्देश दिनी। अपना संबोधन में मुख्यमंत्री ने बोली कि शारदा तटबद्ध केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य और क्षेत्र का समग्र विकास की मजबूत आधारशिला च। राज्य में सेवा सुशासन एवं समर्पण का अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 4 से 18 जुलाई सेवा पखवाड़ा मनाए जाने की निर्णय लियो च। जहाँ को क्रम नैनीताल जिला में 15 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाना छन। यहाँ का तहत आज हल्द्वानी में मैराथन और कास्ट कंट्री दौड़, जूनियर बालक बालिका और ओपन महिला पुरुष हल्द्वानी स्टेडियम आयोजित करेंगे। खेल प्रतियोगिताओं को नैनीताल सांसद अजय भट्टन शुभारंभ करी। श्री भट्टन बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश चौमुखी विकास कनुच। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आया तीर्थयात्रियों ते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन टनकपुर बटेन हरी झंडी दिखे की अगला पड़ाव का ते रवाना करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन रामनगर में 29.65 करोड़ का लागत से निर्मित धनगढ़ी पुल ते जनता को समर्पित करी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन बोली कि शिक्षकों को वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया ते निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने का वास्ता कही अहम निर्णय लिए गए। और हरिद्वार में सहकारिता मंत्रालय को स्थापना का 5 वर्ष पूरा होने का उपलक्ष्य में सहकार से समृद्धि उत्तराखंड की प्रगति थीम का तहत सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम को आयोजन करेंगे। और यहाँ का दगड़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक संगीत। प्रादेशिक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज के लोकगीत। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत मदन मोहन ब्रजवासी के गाए इस ब्रज के लोकगीत के साथ।

आकाशवाणी के अल्बोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं प्रादेशिक संगीत। प्रादेशिक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज के लोकगीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं मदन मोहन ब्रजवासी का गाया ये ब्रज का लोकगीत।

श्रोताओं, मदन मोहन ब्रिजवासी के गाए इसी ब्रज के लोकगीत के साथ हमारा आज का प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा।
1: किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। जून माह के कृषि समृद्धि कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से मैं निर्मला जोशी नैनो उर्वरकों की उपयोगिता से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के सूक्ष्म जीव विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका खाती जी हैं, जिनसे आज हम नैनो उर्वरकों की उपयोगिता पर वार्ता करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका इस कार्यक्रम में।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला मैडम।
1: डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि नैनो उर्वरक क्या हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ी?
2: जी बिल्कुल, नैनो उर्वरक को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे वो नई तकनीक से बने हुए उर्वरक ही हैं। इनमें पोषक तत्व जो खास तौर पे उर्वरकों में पाए जाते हैं वह पोषक तत्व ही होते हैं, परंतु उनके जो कण होते हैं वो काफी छोटे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधे ने आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे हम सामान्यतः यूरिया या फिर अन्य उर्वरक जो भी खेतों में डालते हैं तो उसका पूरा फसल को लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ भाग पानी के साथ बह जाता है, कुछ मिट्टी में रह जाता है और कुछ हवा में उड़ जाता है। तो इससे किसानों का खर्च बढ़ जाता है लेकिन फिर भी पौधों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। इसी समस्या को दूर करने के लिए नैनो उर्वरकों का विकास किया गया है। ये हम कम मात्रा में भी डाल के इसका प्रभावी जो है उसका असर देख सकते हैं और इससे लागत काफी कम हो सकती है और फसल को साथ ही साथ बेहतर पोषण मिल सकता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जब हम नैनो उर्वरकों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ये भी बताइए कि वर्तमान समय में कौन कौन से नैनो उर्वरक किसानों के लिए उपलब्ध हैं?
2: जी, जैसे कि वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना भी होगा कि किसानों के लिए मुख्य रूप से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उपलब्ध है। नैनो यूरिया पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है, जैसे कि यूरिया करवाता है, जो फसल को बढ़वार और हरियाली के लिए आवश्यक होता है। वहीं अगर हम नैनो डीएपी की बात करें तो वो नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस दोनों ही तत्वों की पूर्ति करता है। फॉस्फोरस पौधों की जड़ों के विकास के लिए और शुरुआत में जो उसकी बढ़वार है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन उत्पादों का उद्देश्य फसल को बेहतर पोषण उपलब्ध करवाना तथा उर्वरकों की उपयोग दक्षता जो है उसको बढ़ाना होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं नैनो यूरिया और नैनो डीओपी की, तो नैनो यूरिया और नैनो डीओपी से किसानों को क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में हमारे किसानों को बताइए।
2: नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के वैसे तो कई सारे फायदे हैं।
1: जी,
2: नैनो यूरिया के प्रयोग से पौधों को नाइट्रोजन आसानी से मिलता है, इससे फसल की बढ़वार काफी अच्छी होती है और पत्तियां, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि वो काफी हरे रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और पौधों का स्वास्थ्य भी इससे बढ़ जाता है। तो अगर पौधे का स्वास्थ्य बेहतर होगा तो उसका उत्पाद देने की जो क्षमता है वो भी और बढ़ जाती है। इसी प्रकार नैनो डीएपी जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है, तो मजबूत जड़ों के साथ पानी और जो भी पोषक तत्व वो जड़ों से लेते हैं वह बेहतर ढंग से ग्रहण कर सकते हैं। इससे पौधों की शुरुआती वृद्धि काफी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता में भी काफी सुधार आता है। तो सही तरीके से अगर उपयोग करें तो उर्वरक जो है उत्पाद बढ़ाने और खेती को अधिक लाभदायक बनाने में मदद कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, और मेरा अगला प्रश्न है कि जब अगर कोई किसान भाई नैनो उर्वरकों का प्रयोग करना चाहें तो कैसे नैनो उर्वरकों का उपयोग किया जाता है?
2: खास तौर पे जो नैनो उर्वरकों का उपयोग होता है वो पत्ती में छिड़काव करके किया जाता है। तो इन्हें अक्सर निर्धारित मात्रा जो कि अक्सर डब्बे में लिखी भी रहती है उसको पानी में मिला के स्प्रे मशीन से उसका छिड़काव किया जाता है। तो छिड़काव करते समय लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो घोल है वह पत्तियों पर सामान्य रूप से पहुंचे और सुबह या फिर शाम के समय इसका छिड़काव करें, ताकि अधिक और अधिक उपयुक्त उस वक्त इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर दिन के समय करेंगे तो उस वक्त तापमान ज्यादा होता है और जो पौधे का जो पोषक तत्व को ग्रहण करने का जो तरीका होता है वो मतलब उस वक्त बेहतर होता है, सुबह या शाम के वक्त। और उपयोग से पहले उत्पाद पर लिखे हुए जो भी निर्देश हैं जो डब्बे में अक्सर लिखे जाते हैं वो उनको अवश्य पढ़ लें क्योंकि वे काफी जरूरी होते हैं।
1: मतलब मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जब इन उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो सुबह या शाम का वक्त उपयुक्त होता है ताकि पौधा उसको पूरी तरह से अवशोषित कर सके।
2: जी,
1: अब डॉक्टर साहब, एक

0: महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर नैनो उर्वरकों का उपयोग करा जाए तो क्या नैनो उर्वरक पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हैं?
1: हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। देखिए, नैनो उर्वरक जो हैं वो पर्यावरण के लिए लाभदायक ही माने जाते हैं, क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि जो सामान्य उर्वरक हैं
0: जी
1: वो हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मिट्टी या पानी में रह जाता है और वो उसको प्रदूषित करता है। लेकिन नैनो उर्वरक जो हैं वो पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता क्योंकि बढ़ा रहे हैं, तो इससे पोषक तत्वों की बर्बादी भी कम हो रही है और उसका फिर जो पर्यावरण में जो भी नकारात्मक प्रभाव हो भी सकता है वो भी कम होता है। तो इस प्रकार नैनो उर्वरक टिकाऊ खेती के लिए बेहतर माने जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, टिकाऊ खेती के लिए भी बेहतर माने जाते हैं और पर्यावरण को भी इनसे कोई नुकसान नहीं है।
1: हाँ, कह सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, अगर किसान इसे उपयोग करना चाहे तो नैनो उर्वरक किसानों को कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं?
1: आजकल तो वैसे नैनो उर्वरक देश के अधिकांश क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। किसान भाई इन्हें अपने नज़दीकी कृषि सेवा केंद्र या फिर उर्वरक विक्रेता या फिर सहकारी समितियां तथा किसान सेवा केंद्रों से खरीद सकते हैं। और खरीदते समय लेकिन उनको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो किसी विश्वसनीय और अधिकृत कंपनी का ही हो, मतलब लोकल कोई ब्रांड इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बोतल पे दिए गए निर्देशों को अवश्य पढ़े और आवश्यकता पड़ने पर वह कृषि विशेषज्ञों से भी सलाह ले सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, अगर नैनो उर्वरकों की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक और प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि नैनो उर्वरकों का किन-किन फसलों में परीक्षण किया गया है और इसके क्या परिणाम अभी तक मिले हैं?
1: जी, जैसे नैनो उर्वरक के अगर परीक्षण की बात करें तो देश के विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कई सारी फसलों में इसका परीक्षण किया गया है। इनमें से जैसे मुख्य फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, सरसों और सोयाबीन, चना, अरहर, गन्ना और भी कई सारे जैसे सब्जियां हैं या बागवानी फसलें हैं, कई सारी फसलों में इसका प्रशिक्षण किया गया है। और प्रशिक्षण में यह भी पाया गया है कि जो वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसार आप इसका उपयोग अगर करें तो फिर जो फसल है उसकी बढ़वार अच्छी पाई गई और पौधे अधिक स्वस्थ रहे तथा उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया। तो विशेष रूप से जैसे धान, गेहूं, मक्का और कई सब्जी फसलों में हमें अक्सर काफ़ी अच्छे परिणाम इसमें मिले हैं। और नैनो उर्वरकों का उपयोग अधिकांश फसलों में, लेकिन जिनमें नहीं भी हुआ है उसमें भी किया जा सकता है, जैसे कि अनाज है, दलहन, तिलहन, सब्जियां या फलदार पौधे जो भी हैं और बागवानी फसलें जो भी हैं उसमें इसका उपयोग लाभ ही देगा। हालांकि हर फसल की जो आवश्यकता होती है वो काफ़ी अलग होती है, इसलिए किसानों को अनुशंसित मात्रा का और सही समय का पालन ज़रूर करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, मतलब एक निश्चित मात्रा का उसमें प्रयोग
1: जी
0: करा जाए और समय भी सही सही
1: बिल्कुल।
0: हो, ये हम सार रूप में कह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई नैनो उर्वरकों का प्रयोग करें तो खेती की लागत पर क्या असर पड़ेगा? मतलब लागत बढ़ेगी या घटेगी? थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में भी संक्षेप में समझाइए।
1: ये भी किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
0: जी
1: देखिए, हर किसान यही जानना चाहता है कि तकनीक अपनाने से उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम बात करें नैनो उर्वरकों की तो यह सवाल उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नैनो उर्वरक की अगर हम आज एक बोतल खरीदें तो उस पर आप अगर बाकी उर्वरक के कम की तुलना करें तो उस पर खर्चा ज़रूर आपको लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये काफ़ी कम मात्रा में उपयोग होता है और उस कम मात्रा में भी पौधों को काफ़ी पर्याप्त पोषण मिल जाता है। तो चूंकि पौधे पोषक तत्वों का अधिक उपयोग कर लेते हैं इसलिए उर्वरकों की उपयोग दक्षता बढ़ जाती है, मतलब कम उपयोग करके भी आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो जब किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार, मतलब आपको थोड़ा जितना लिखा है कि इतना उपयोग करना है तो आपको उतना ही अगर आप करें तो उसके अनुसार करके कई बार पारंपरिक उर्वरकों की आवश्यकता काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मतलब आप थोड़ा पारंपरिक उर्वरक भी इस्तेमाल करें और कुछ आप नैनो उर्वरक भी इस्तेमाल करें तो पारंपरिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाएगी और आपकी लागत उससे देखा गया है कि काफ़ी कम हो जाती है। इससे उर्वरक खरीदने, क्योंकि ये छोटे पैकेट में मिलते हैं तो इसलिए आपको खरीदने, ढोने और खेती में डालने से जुड़े जो भी लागत है आप उनसे भी बच सकते हैं।
0: जी।
1: और साथ ही यदि फसल की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन बढ़ता है तो किसान को अपने उपज से अधिक आय भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि नैनो उर्वरक का सही और संतुलित उपयोग करने पर खेती की कुल लागत जो है वो नियंत्रित करने तथा लाभ बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि ये ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है कि नैनो उर्वरक सभी पारंपरिक उर्वरकों का पूरी तरह से विकल्प नहीं है, मतलब आप पूरी तरह से पारंपरिक उर्वरक को

0: हटा के नैनो उर्वरक इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप मतलब दोनों के बीच में कुछ तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपको थोड़ा पारंपरिक उर्वरक के साथ कुछ नैनो उर्वरक मिला के आप इस तरह से लागत को कम कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, सार रूप में कह सकते हैं कि सही और संतुलित मात्रा में इसका उपयोग करना है,
0: जी,
1: है ना।
0: हाँ।
1: तो डॉक्टर साहब, नैनो उर्वरकों का उपयोग करते समय निश्चित तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता होगा, तो क्या क्या ऐसी बातें हैं, क्या क्या ऐसी तथ्य हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए नैनो उर्वरकों का प्रयोग करते समय?
0: जी, ये जो बातें हैं इनको हम ज़्यादातर हम कहेंगे कि सावधानियाँ।
1: जी
0: तो ऐसे बहुत सारी सावधानियाँ हैं जिनका हमको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। कुछ मैंने पहले भी जैसे बात की है, एक तो कि हमें जो भी अनुशंसित मात्रा है उसका ही उपयोग करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी लागत बढ़ जाएगी, और अगर आप कम करेंगे तो हो सकता है आपको वो परिणाम ना मिले जो आप अपेक्षा कर रहे हैं। और छिड़काव सुबह या शाम के वक्त करें, क्योंकि दिन में क्या होता है, तापमान अधिक होता है। बारिश या तेज धूप के समय छिड़काव ना करें। बारिश से भी क्या होगा कि आप क्योंकि पत्तियों में छिड़काव करें तो हो सकता है वह धुल जाए और वो

0: तो आपकी लागत बढ़ जाएगी, और अगर आप कम करेंगे तो हो सकता है आपको वो परिणाम ना मिले जो आप अपेक्षा कर रहे हैं। और छिड़काव सुबह या शाम के वक्त करें, क्योंकि दिन में क्या होता है, तापमान अधिक होता है। बारिश या तेज धूप के समय छिड़काव ना करें। बारिश से भी क्या होगा कि आप, क्योंकि पत्तियों में छिड़काव करें तो हो सकता है वह धूल जाए और वो उसका आपको परिणाम ना मिले। और घोल बनाने के लिए हमेशा साफ पानी का ही प्रयोग करें। उत्पाद पर लिखे जो भी निर्देश है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें। किसी भी तरह की अगर आपको कोई शंका है तो कृषि विशेषज्ञ या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह जरूर ले लें।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। अंतिम प्रश्न आपसे कि किसानों के लिए आपका क्या संदेश है?
0: मेरा तो यही संदेश है कि किसान भाई अधिक जो है आधुनिक कृषि तकनीकों को जरूर अपनाएं और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार नैनो उर्वरकों का उपयोग करें। नैनो उर्वरक फसल को बेहतर पोषण देने, उपयोग उत्पादन बढ़ाने और उर्वरकों का जो उपयोग दक्षता है उसको सुधारने में मदद कर सकते हैं। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देते हैं। यदि किसान सही जानकारी सही समय पर इनका उपयोग करे तो वे अपनी खेती को अधिक लाभदायक, टिकाऊ और आधुनिक बना सकते हैं। बस
1: तो किसान भाइयों, आज यहाँ आए विशेषज्ञ ने आपको नैनो उर्वरकों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया और आप इन बताई गई बातों को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं एवं भूमि को और अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। काश्तकार बंधुओं, यदि आप लोगों की कृषि से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निःशुल्क टेलीफोन नंबर 1800180-2311 पर संपर्क कर सकते हैं, या इसके अलावा आप पत्र लिखकर भी कृषि संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि समृद्धि, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अल्मोड़ा। इसी के साथ मैं निर्मला जोशी यहाँ उपस्थित डॉक्टर प्रियंका खाती जी से अनुमति लेती हूँ अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय कुछ अन्य प्रश्नों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:30 होने को हैं। अब कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उक्तगढ़ मी योगिता बिष्ट। पहली मुख्य समाचार। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल तनकपुर बटी हरी झंडी दिखबेर आगेल पड़ाओं के लिए रवाना करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल रामनगरम 29,65,00,000 डबलूल बनी धनगलपुण के आज जनता के समर्पित करो। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल को कि शिक्षकों को वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बहुत जरूरी फैसला ली जा रही और हरिद्वारम सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 साल पूर्ण मौके पर सहकार से समृद्धि उत्तराखंड की प्रगति थीमक तहत सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तारल। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल चंपावत जिला तनकपुर बटी हरी झंडी दिखबेर आगिल पड़ाओं के लिए रवाना करो। 51 सदस्यीय दलम 21 सालक जवान नंतिनू बेलीबेर 68 सालक बुढ़ ले शामिल छन। यह मौके पर मुख्यमंत्री को की राज्य सरकार यात्रा के सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पूर्ण कोशिश कर रही है।

0: सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए लगातार हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग, सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर करते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन हो जाएंगे। स्थानीय उत्पादों को, हमारे यहाँ के संस्कृति को, इन सभी यात्रियों को सुनने का अवसर मिलेगा।
1: यह भी पली शनिवार हैते हैं यात्री टनकपुर पूजी, जहां पारंपरिक कुमाऊनी रीति रिवाज और छोलिया नाचक दगड़ शिव भक्तों का स्वागत करीगो। तीर्थ यात्रियों यात्रा सुविधाओं पर संतुष्टि जता
2: सेवाएं हो रही है, जितना आप लोग ध्यान रख रहे हैं ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। खास करके कुमाऊं मंडल और वो लोगों ने जो हमारी सेवा की है उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम रास्ते में आए वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा गया, हमें लंच सब अच्छे से दिया गया। और मैं यही कहूँगा कि और लोग भी इसके लिए अप्लाई करें, यंग लोग भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड लोग ही आ सकते हैं, ज़रूर से अप्लाई करें वहाँ।
1: चंपावत तक बटी दूसर बेर यो यात्रा संचालित करी जा रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील नैनीताल जिलक रामनगरम 29,65,00,000 लागतल बनी 220.90 मीटर लंब धनगढ़ पुल के जनता के समर्पित करो। यो पुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 काशीपुर रामनगर मरचूला बुआखाल मार्ग कुमाऊं और गढ़वाल के जोड़ने वाले महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग छू, जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तक पुजनक प्रमुख प्रवेश मार्ग हुनक दगड़ दगड़ नैनीताल अलमड़ बक्सर पिथौरगढ़ चंपावत और पौड़ी गढ़वाल मैशुंक लीजी ठुल सौगात छू। यह मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कह की यह पुलक शुरू होनल पूर्व प्रदेशक लोगों के फैद मिलल।
0: क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए और मैं कहूँ तो इस पुल को कह सकते हो कि पूरे उत्तराखंड की कनेक्टिविटी के लिए ये पुल आज जो चालू हो रहा है, धनगढ़ी का पुल और इसके बगल में ही पनौत का पुल, दोनों ही पुल जो है 29 करोड़ की धनराशि से अधिक के पुल बने हैं। और इस पुल के बन जाने से जो वर्षा काल में इधर पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत प्रभावित हो, अनेकों लोगों को इसमें बड़ी जनहानि भी हो और आज ये पुल चालू हो जाने की लहर है लोगों।
1: रणखीतक विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवालल करीब 9,03,00,000 रुपए लागतल बढ़ने वाले नई बस टर्मिनलक भूमि पूजन करबेर निर्माण कार्यक शुभारंभ करो। उन्होंने कार्यदायी संस्था के तय बखत पर काम पूर करनक दगड़ गुणवत्ता पूर्वक काम करनक निर्देश दी। विधायकल कह की बस टर्मिनलक बढ़नल रणखेतम लय और महानगरों तारी बसों के ठर करनक सुविधा दगड़ यात्रियों के आवागमनक आधुनिक सुविधाएं मिलेगी।
3: प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बठे सुन लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड मेले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपुलोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
1: प्रदेश विद्यालय शिक्षा विभागक अंतर्गत मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर स्थानांतरण चाणी वाले बीमार शिक्षकों के दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण करान पड़ल। यह अकलिजी निदेशालय स्तर पर विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करनक निर्देश विभागीय अधिकारियों के दी जेरी, ताकि फर्जी मेडिकल बनाने वाले शिक्षकों पर शिकंज कसी जा सको। यह के अलावा गंभीर बीमारी वाले और शारीरिक रूपल अक्षम शिक्षकों व शिक्षणेतर कार्यक्रमों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनक निर्देश ले अधिकारियों के दिहेनी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावतल बता कि राज्य सरकार शिक्षकों का वार्षिक स्थानांतरणक लिजी पूर्व तरीकल तैयार छू। यह लिजी विभागीय स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूर करी जा रही। उन्होंने कहा कि विभागीय उच्च स्तरीय बैठक में स्थानांतरण प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी बनाक लिजी कई जरूरी फैसल ली जा रही। हरिद्वारम सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का 5 साल पूर्ण उपलक्ष्य में सहकार से समृद्धि उत्तराखंड की प्रगति थीमक तहत सहकारिता सप्ताह कार्यक्रमक आयोजन करीगो। कार्यक्रम में प्रदेशक कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। डॉ. धन सिंह रावतल बता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बटी 5 साल पली भारत में एक नई सहकारिता मंत्रालय बना और देशक पली सहकारिता मंत्री अमित शाह के बनाई गो। पुरदेशम 29 जून बटी 6 जुलाई तक विभिन्न प्रकारक आयोजन करी जा रही। इनम पौधरोपण, किसान गोष्ठी और सहकारिता

0: संवाददाता सम्मेलन शामिल छन। एक दौरान पूरे देश में 1 करोड़ वोट लगाणक लक्ष्य धरी जा रो।
1: द्वारा आज से 5 वर्ष पूर्व भारत में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है और 5 वर्ष पूरे होने पे पूरे देश में 29 तारीख से देखिए और 6 जुलाई तक जो है पूरे देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं। उसमें वृक्षारोपण है, उसमें किसान गोष्ठियां हैं, उसमें सहकारिता बंधु के सम्मेलन है और हमारे जितने भी देश में 1 करोड़ वृक्षारोपण लगाने का हमारे सरकार ने थे। हमारे राज्य में भी हम लोग हर जिले में हर समिति में बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं।
0: सहकारिता समिति भाद्रबादक चेयरमैन अनिल चौहानल को की यो मौक पर पौध रोपण करी जल जेल कसल प्रकारक परेशानी ना हो।
2: सरकार को आज पूरे 5 साल हो चुके हैं, सहकारिता को 5 साल हो चुके, हमारे मुख्यमंत्री जी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ ये कार्य रखा गया, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए पर्यावरण को बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना चाहते हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां ना हो।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल चंपावतक बूमघाटम जिला के 2 बार सुरक्षा परियोजनाओं को विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास करो। मुख्यमंत्री 60.21 करोड़ लागतल बूम बटी टनकपुर तक शारदा नदी किनार पर बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य और 5.74 करोड़ लागतल पूर्णागिरी तहसीलक छिनीगोड गांव सुरक्षा क्लिजी हुड्डी नदी पर बाढ़ सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य शिलान्यास करो। कार्यक्रम स्थल पूजन हवे पली मुख्यमंत्री शारदा नदी पर संचालित बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के स्थलीय निरीक्षण कर बेर कार्यों प्रगति जायजा लियो और संबंधित अधिकारियों के निर्माण कार्य गुणवत्ता दगड़ और बखत पर पूर्ण करनक निर्देश दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री को की शारदा तटबंध केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि आनवल पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और इलाका का समग्र विकास का मजबूत आधारशिला छू। राज्य में सेवा सुशासन और समर्पण के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 4/18 जुलाई तक सेवा पखवाड़ा मनाए जाने फैसला ली जा रो। जय क्रम में नैनीताल जिले में 15 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करी जा रही। यह तहत आज हल्द्वानी मैराथन और क्रॉस कंट्री दौड़ जूनियर बालक बालिका और ओपन महिला पुरुष हल्द्वानी स्टेडियम आयोजित करी गई। खेल प्रतियोगिता नैनीताल सांसद अजय भट्टल शुभारंभ करो। श्री भट्टल को की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास करो रो। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल टनकपुर बटी हरी झंडी दिखाबेर अखिल पड़ाओं के लिए रवाना करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल रामनगरम 29.65 करोड़ डबलोल बनी धनगढ़ पुल के आज जनता के समर्पित करो। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावतल को शिक्षकों को वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बहुत जरूरी फैसला ली जा रही और हरिद्वार सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 5 साल पूर्णक मौके पर सहकार से समृद्धि उत्तराखंड की प्रगति थीमक तहत सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम आयोजन करी गो। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 7:40 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रही हैं मोहित चौहान की आवाज में फिल्म लव आजकल के इस गीत के साथ। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये गीत। आवाज़ें हैं एलिसा मेंडोंसा और मोहित चौहान की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को सरगम में बांधा है शंकर एहसान लॉय ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ये खूबसूरत गीत। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह, शिल्पा राव और श्रेया घोषाल की। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को सरगम में बांधा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के ही समापन में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बर्फी का ये गीत। आवाजें हैं पेपोन और सुनिधि चौहान की, गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, फिल्म बर्फी के इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई इस गज़ल के साथ।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई ये गजल।

श्रोताओं, जगजीत सिंह की गाई इसी गज़ल के साथ हमारा आज का गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को हैं। अब स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर और हर लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से। फ्रांस और मैक्सिको विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। विंबलडन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले शुरू हुए। भारत ने 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 10 पदकों के साथ विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में अपना अभियान संपन्न किया और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 80वां संस्करण आज देश भर में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिकेट के रोमांच के साथ आज के कार्यक्रम को, जहां लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इस समय महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और इस मैच की और क्रिकेट के मैदान की ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, इस समय फाइनल मुकाबले में क्या ताज़ा अपडेट है?
1: शक्ति, पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है और एमी जोन्स और डेनियल वायट होज ये दोनों ही अपना विकेट गंवाकर वापस जा चुकी हैं पवेलियन। तो इंग्लैंड जो है 36 रन पर 2 विकेट गंवा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो दोनों विकेट हैं वो किम गार्थ और एनेबल सदरलैंड ने लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना 9वां फाइनल आज खेल रही है और 6 बार इससे पहले विजेता बन चुकी है। और इंग्लैंड की जो टीम है वो अभी तक अपनी धरती पर टी20 विश्व कप का कोई भी मुकाबला नहीं हारी है। इसी के साथ अगर हम इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 45 मुकाबले दोनों के बीच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 22 और इंग्लैंड ने 20 मुकाबले जीते हैं। तो यहाँ अभी ऑस्ट्रेलिया की नज़रें अपनी 7वें खिताब जीतने पर होंगी, वहीं इंग्लैंड जो है वो 2017 के बाद एक और ICC ट्रॉफी जीतने पर जोर कसेगा।

0: बिल्कुल अपनी नजरें रखेगा एक और ट्रॉफी पर, लेकिन कह सकते हैं कि आज के इस रात में किसी एक टीम का रिकॉर्ड टूटना जरूर तय है। इससे पहले भारत को कल इंग्लैंड के साथ दूसरे टी20 मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन का योगदान दिया। 191 रन के लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने जैकब बेथल के 46 गेंद पर नाबाद 76 रन की पारी की बदौलत एक ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे आ गया है और अगला मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंगम में खेला जाना है। हालांकि इस मैच की सबसे खास बात रही युवा वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। महज 15 वर्ष 99 दिन की आयु में डेब्यू करते हुए वैभव ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने का कीर्तिमान अपने नाम किया। वैभव ने खुद अपने अनुभव कैसे साझा किए सुनते हैं।
1: काफी अच्छा लग रहा है, ड्रीम ही था किसी के लिए भी इंडिया खेलना ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने फादर को जाके रूम में बताया और किसी से मैंने बात नहीं की, और जो भी मेरे सर हैं, जो भी मतलब मेरे जो साथ रहते हैं उन सबों को बताया। पापा खुश हुए और बोले बस कि जो करते आ रहे अभी तक वही करना है, प्रेशर नहीं है, बस अपने गेम को बैक करना है।
0: विशेष जब भी वैभव मैदान पे उतरते हैं उनकी नजरों में कोई रिकॉर्ड होता है या कोई कीर्तिमान होता है। डेब्यू के साथ इस खिलाड़ी ने कितने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए।
2: देखिए शक्ति, वैभव जब भी मैदान पर उतरते हैं अपने खेल से सभी को प्रभावित करते रहते हैं। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स और आंकड़ों की बात करें तो वैभव 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में विजय हजारे ट्रॉफी में भी डेब्यू कर लिया था। उसके साथ भारतीय खिलाड़ियों में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं वो IPL में। 35 गेंदों में उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम किया था। उसके बाद 2008 में, दिलचस्प बात यह है कि 2008 में IPL जो है शुरू हुआ और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी का जन्म हुआ, तो ये भी रिकॉर्ड उनके नाम है। और अभी उन्होंने अंडर 19 विश्व कप फाइनल में 80 गेंदों में 175 रन की पारी खेलकर सभी को बहुत प्रभावित किया और इसी के साथ उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और उनको सचिन से बहुत रिलेट किया जाता है शक्ति, तो इसमें बताना चाहूंगा कि सचिन और वैभव की उम्र में, डेब्यू की उम्र में 1 साल का अंतर है और जो पहला स्कोर दोनों ने बनाया था उसमें भी सिर्फ 1 रन का ही अंतर है।
0: जी बिल्कुल, सचिन ने अपने पहले मुकाबले में 15 रन बनाए थे और वैभव 14 रन बना सके, लेकिन एक बहुत बेहतरीन ट्रेलर दुनिया के क्रिकेट जगत के लिए। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप की, जहां राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में होगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इससे पहले फ्रांस और मोरक्को ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं कल खेले गए मैच का हाल।
3: फ्रांस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस के इस जीत के नायक किलियन एम्बापे रहे, जिन्होंने 69वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल किया। फ्रांस को मिली पेनाल्टी का फायदा उठाते हुए एम्बापे ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। ये एम्बापे का इस विश्व कप में 7वां गोल है। हालांकि फ्रांस के लिए ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं रहा। पराग्वे ने पूरे मैच में मजबूत डिफेंस के बल पर फ्रांस को ज्यादा मौके नहीं दिए। पहले हाफ में फ्रांस के ज्यादातर शॉट का गोलकीपर ऑलैंडो गिल ने आसानी से बचाव किया। दूसरे हाफ में लगातार बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार 69वें मिनट में फ्रांस को पेनाल्टी मिली और एम्बापे ने उसे गोल में बदलकर टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। इसके बाद फ्रांस ने बढ़त को अंत तक कायम रखा और 1-0 की जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।
4: The French machine does indeed march on.
3: इससे पहले कल रात राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में मोरक्को ने सह मेजबान कनाडा को 3-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मैच की शुरुआत में कनाडा ने आक्रामक खेल दिखाया और कई अच्छे मौके बनाए, पर टीम इन मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रही। इसके बाद 50वें मिनट में फ्री किक पर हकीमी के पास को अजेदीन ओनाही ने शानदार गोल में बदलकर मोरक्को को 1-0 की बढ़त दिला दी। 82वें मिनट में ओनाही ने एक और गोल करते हुए मोरक्को की बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद स्टॉपेज टाइम में सोफियाने रहीमी ने तीसरा गोल दागकर टीम की जीत पर मोहर लगा दी।
5: ब्राहिम डियास एंड नाउ रहीमी टू पुट द ग्लॉस ऑन इट।
6: वी गॉट प्लेयर्स ऑफ दिस क्वालिटी, द गोल्स कैन कम एट एनी मोमेंट।
5: द एटलस लायंस द फर्स्ट टीम टू बुक देयर प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप।
3: अब क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का मुकाबला फ्रांस से होगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए

0: प्रशांत कुमार।
1: और फीफा के रोमांच के बाद अब बात विंबलडन के ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट की, जहां राउंड ऑफ 16 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। आज पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में नोवाक जोकोविच का मुकाबला रोमान के साथ जारी है। वहीं यानिक सोनर का मुकाबला अब से कुछ देर बाद जापान के शिंतारो मोचीजुकी से होगा। इसके अलावा दो अन्य मुकाबले खेले जाने हैं, जहां महिला सिंगल्स में जेसिका पेगुला ने ईवा जोविका को हरा दिया है, जबकि आर्यना सबालेंका और कोको गौफ भी अब से कुछ देर बाद अपने मैच खेलेंगी। तो आइए जानते हैं किन किन खिलाड़ियों ने इस दौर में अपनी जगह बना ली है।
2: फ्रेंच ओपन चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं इटली के माटेओ बेरेटी ने और मेजबान ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2 घंटे 4 मिनट तक चले मुकाबले में फ्रांस के वैलेंटिन रॉयर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले 2 सेट आसानी से अपने नाम कर लिए। तीसरे सेट में रॉयर ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टाई ब्रेक में ज्वेरेव ने बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया। मेजबान ब्रिटेन के 23 वर्षीय आर्थर फेरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने फिनलैंड के ओटो विर्टानेन को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहले सेट में हारने के बाद फेरी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वे वर्ष 2000 के बाद विंबलडन मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचने वाले केवल चौथे ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में भावना ने फाइनल्स में अपनी ही देश की पूजा को शूटआउट में हराकर महिलाओं का पैरा रिकर्व का खिताब जीता। इसके साथ ही भारत का यादगार अभियान 10 पदकों के साथ समाप्त हो गया।
3: चेक गणराज्य के नोवे मेस्टो में विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में भारत की भावना ने फाइनल में अपने ही देश की पूजा जथ्यान पर एक शानदार जीत के साथ प्रतियोगिता में भारतीय अभियान का समापन किया। पूरी तरह से भारतीयों के बीच हुए इस फाइनल मुकाबले में भावना ने निर्णायक दौर में संयम बनाए रखा और टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। वहीं पूजा जथ्यान को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने इस प्रतियोगिता का समापन 10 पदक के साथ किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे। भारत की स्वर्ण पदक की सूची में दोनों मिक्स टीम स्पर्धाओं की जीत भी शामिल थी। शीतल देवी और श्याम सुंदर स्वामी ने फाइनल में इंडोनेशिया को 147-143 से हराकर कंपाउंड मिक्स टीम का खिताब जीता, जबकि भावना और हरविंदर सिंह ने इंडोनेशिया पर 6-2 से जीत हासिल कर रिकर्व मिक्स टीम का खिताब अपने नाम किया। हरविंदर सिंह और सुंडी विजय ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स तथा भावना और पूजे जथिया ने पैरा रिकर्व महिला डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब चलते हैं स्क्वाश की तरफ, जहां तन्वी खन्ना ने SRFI PSA चैलेंजर्स टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई में खेले गए फाइनल में तन्वी ने मिस्र की फरीदा वालिद को हरा करके ये खिताब जीता।
4: Third seed Tanvi Khanna staged a remarkable comeback to defeat Egypt's second seeded Farida Walid after being 2 games down, the scoreline reading 8-11, 2-11, 12-10, 11-9, 11-7 in Tanvi's favor, clinched the women's title at the HCL SRFI PSA Challenger Tournament at Mumbai. Tanvi looked headed for a straight games defeat after trailing 4-8 in the third game, but fought back brilliantly to turn the contest around in 45 minutes. In the men's final, Malaysia's M. Saifik Kamal recorded from 2 games down to beat Egypt's Yasin Shodi 6-11, 9-11, 11-8, 14-12, 11-8. The tournament witnessed high quality competition throughout the week. For Sports Scan, S. Kishore from Mumbai.
1: Tanvi Sharma ne is jeet ke saath baad apne anubhav Sports Scan ki team ke saath saajha kiye. Sunte hain unhone kya kaha.
5: Now I'm just very speechless because it's a long time since I won such a big tournament, and she's a really good player. She's been winning everything, and the last time we played she won the match 3-2. It was very close. Just wasn't playing my best in the beginning of the match, and somehow at 8-4 something in me just turned, got my confidence back, and from there I found my length, I found my drops, saw that she was getting tired, and I just held on to that and I kept pushing till the end.
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल केवल एक फिटनेस गतिविधि नहीं, बल्कि देश के स्वास्थ्य और जागरूक करने के लिए विकसित भारत बनाने का एक जन आंदोलन है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज 80वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में श्री मांडविया ने लोगों को फिटनेस की शपथ दिलाई और उनसे स्वस्थ जीवन

0: शैली अपनाने का आह्वान किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है।
0: तो कई समाधान लेकर के आती है इस फिटनेस वाली साइकिल, और इस अवसर पर मॉडल और अभिनेता नासिर अब्दुल्ला ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह जल्दी उठना उनके लिए बेहद सुखद अनुभव रहा।
2: A pleasure to wake up at 4:15 in the morning to be able to make it here. So the energy was wonderful and itne sare log aaye hue the participate in this beautiful Fit India running for fitness. The minister of the sports as well to give us added encouragement about it. So it's wonderful. Cycling is a very simple exercise.
0: अब बात करते हैं बैडमिंटन की, क्योंकि आज जो पूरी दुनिया विश्व बैडमिंटन दिवस बना रही है। ये दिन हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा 2022 में की गई थी, जो 5 जुलाई 1934 को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना की याद दिलाता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दिन कुछ और भी खास हो जाता है, क्योंकि आज ही भारत की सबसे सफलतम बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक पीवी सिंधु का जन्मदिन है, जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक और विश्व चैंपियनशिप जैसे कई कीर्तिमान अर्जित किए हैं।
3: The first player from India ever to win gold at the World Badminton Championships.
0: तो एक बहुत शानदार खिलाड़ी पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स कैन की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने भारत में बैडमिंटन की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी है। और अब अंत में चलते चलते वापस एक बार लॉर्ड्स में खेले जा रहे T20 विश्व कप, महिला विश्व कप के फाइनल के स्कोर पर नजर डाल लेते हैं, जहां 8 ओवर हो चुके हैं और इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 48 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार

0: में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरौली, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने

0: पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती

0: तटवर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ताजू?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं इंद्रधनुष। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सिलसिला का ये गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शिव हरि ने।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम के समापन में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म मिलन का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, मिलन के इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस बात संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान, आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है।

0: ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपने श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकते, वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं,
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन्स ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो TMH में लोड कम होता है, बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1,000-1,200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम 3rd generation है, 4th generation है, कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा 5th generation है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंगबूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे, उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास, यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं। जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल

0: रेट पे लेकर के आ जाए, जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटलेक्सेशन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ एनएमएल आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर के ये जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
1: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
0: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
1: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में एनएमएल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
0: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाइपर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज वॉट वी फील, दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क्स इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
2: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना, यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
2: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जे भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, यू डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
1: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ ना मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
3: मैनेजमेंट विद

0: ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है, बल्कि एक्सलरे की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है जो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है, जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारी आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
2: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए। हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस ऋषि मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा, और जोश लगा, तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग SHG ग्रुप का काम किया।
1: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
2: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
1: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
2: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
1: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराई कला। सोहराई के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हैं स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
3: सोहराई पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में। युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
1: हीरा मांझी की बात

0: औरतें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराई पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
1: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहाँ हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं, तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
2: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में, हर जगह पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
2: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी आते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है। और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहते हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
3: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कुमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
0: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
4: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई, और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है टीएफए का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में टीएफए अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
4: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के

0: लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो, और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है, और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
2: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है। तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है, आशीष तानीपुरती जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और इसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है। तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
2: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल, सिनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4,000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस RDC लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
3: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
1: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्म

0: निर्भरता की नई इबारत, जहां की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत। प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
1: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकरलाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक while he was still a child. Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Shri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on, participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chand Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected

0: to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankar Lal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
1: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
0: टुडे ही इज अकॉम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। कैलाश चंद शर्मा बिगिंस हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मालगुंजी। विलंबित कॉम्पोजिशन is set to ek taal and drut composition is set to teen taal.

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र

0: से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, a new chapter is being written in Shivpuri's history today. Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly, and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia. Mr. Sindhya said, the project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from tomorrow till the 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia. The Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister Modi's visit, Indonesia will launch 15-month-long commemorative programs marking the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to the country. Talking to Akashvani News, India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said, celebrations will include exhibitions and year-long cultural programs highlighting the deep cultural ties between India and Indonesia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar began his official visit to West Asia today, covering Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman. On the first leg of his visit, Dr. Jaishankar reached Doha, where he met Qatari